89.6 Mirchi 1. It's hot.

जा बुरा करते हाल, पलक फड़के आए के दिल धड़के, उमर की उठा।

आगे भागूं मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें मीचे।

0: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
1: क्यों
0: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
1: क्या

0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आया मुझे ये ख्याल, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आफरीन एंड यू हैव ट्यून्ड इन टू 89.6 मिर्चीवान। और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही जिंदगी से हम थोड़े से मिल लेते हैं, एक नई दिन की शुरुआत होती है, धीरे धीरे सुबह की मस्ती से हम घुलमिल जाते हैं। जिंदगी का देखा जाए तो यही तो मजा है, हर मोड़ पर कुछ नया मिलता है। चलो फिर आज के दिन को भी अपना दोस्त बनाते हैं और इस पल का पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। सो यस, वेलकम टू 89.6 मिर्चीवान, मैं हूँ आफरीन आपके साथ। आपके दिन को बनाने के लिए ये रहे कुछ जबरदस्त से गाने, सिर्फ हियर, राइट हियर ऑन 89.6 मिर्चीवान, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. हेलो
2: बेटा, आप घर आ जाओ, मामा परेशान है, खाना खा ले। ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आ जा।
1: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
2: बेटा आ जा, देख आ जा, आ जाओ, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
1: हेलो बेटा। अरे अंकल, आप ये तो बताइए, बोल कौन रहे हो?
2: देख आपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते बेटा। एक तो बुढ़ापे में तू ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते, और तू चला जाएगा तो वैसे क्या होगा?
1: अंकल मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
2: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
1: अरे अंकल ये तो बताइए, आप बोल कहाँ से रहे हो?
2: बेटे ऐसे नाराज होते हैं तो
1: जानते। अंकल मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है।
2: बेटे देख ऐसे ये नाराजगी होती है तो ऐसे घर छोड़ कर जाते हैं।
1: माता जी से बात करा दीजिए।
2: बेटे आजा आजा बेटे।
1: अंकल माता कहाँ है?
2: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
1: छाता नहीं अंकल माता, आप अपने कान के बात।
2: बेटे कोई गलती हुई है देख तो बेटे माफ कर दे, ऐसे नहीं जाते।
1: अंकल मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
2: अरे बात मेरे बात,
3: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
1: हेलो
2: बेटे। हेलो
1: अंकल, आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
2: बेटे घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
1: अरे अंकल मेरे बात कर,
2: अगर आप तू आ जाएगा तो आज
1: आपने नंबर क्या मिलाया?
2: तो कान में सुनाई दे बेटा, तेज बोल भाई जी, जो चाहिए दे देंगे। आजा बेटे।
1: अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
2: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे।
1: क्यों?
3: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो भाई?
1: भाई मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया चीख चीख के।
3: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई, अब धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
1: बोलना जरूरी है?
3: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
2: आवाज नहीं आई, तेज बोल।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

अजी 5 घंटे की नींद और फिर भी फुल एनर्जी। अगर आप ऐसे हो तो सच बताओ, कॉफी पर जिंदा हो क्या या पर सच में सुपर हीरो हो? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और आज एक इंटरेस्टिंग स्टडी सामने आई है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4-5 घंटे की स्लीप पर भी बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। वेल, रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये लोग रेयर जेनेटिक म्यूटेशन वाले होते हैं, less than 1% पॉपुलेशन, मतलब नेचुरली शॉर्ट स्लीपर्स। मैं तो इन्हें सुपर हीरोज ही कहूंगी। वेल, अगर टेक्निकली थोड़ा सा बताऊं तो इसमें एक जीन होता है DEC2 जिसे कहते हैं, जो बॉडी के स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। इन लोगों का ब्रेन फास्टर रिकवरी करता है, मेटाबॉलिज्म शार्प रहता है और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस भी इनकी बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं। बेसिकली बिल्ट इन एफिशिएंसी मोड है इनका। वैसे ये सबके लिए नहीं होता। बाकी लोग अगर 5 घंटे सोकर हीरो बनने की कोशिश भी करें ना, तो रिजल्ट होता है ब्रेन फॉग मेरी तरह, इरिटेबिलिटी और लो फोकस। मतलब सुपर पावर नहीं, मैं बिल्कुल स्लो मोशन मोड में चली जाती हूँ। वैसे आपका क्या टाइप है, मतलब कितने घंटे की नींद के बाद आपको एकदम फ्रेश वाली फील आती है? देखो, मैं तो उस किस्म की कैरेक्टर हूँ जो भले ही 7 घंटा सो जाए, उसके बाद भी मेरे जो अलार्म्स होते हैं ना, वो 10 अलार्म्स होते हैं विद 10 snoozes। एंड आई नो पीपल जो सही में 5 घंटे में फुल ऑन एनर्जी में काम करने लगते हैं। यू गॉट टेल मी 5000-1896 पर कि कौन से कैटेगरी के इंसान हैं, सुपर पावर वाले हो कि भाई हमें तो कॉफ़ी की भी ज़रूरत नहीं है, हमें बस 5 घंटे की नींद ही काफ़ी है, या फिर आप मेरी तरह हो भाई, नींद ही तो असली सोना है, असली गोल्ड है फॉर अस। 5000-1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर, लेट्स कनेक्ट हियर। और तब तक के लिए एक लगाना, एंजॉय कीजिएगा राइट हियर और माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मैं आस्था सिंह और अकाशा सिंह की आवाज में, आस्था गिल और अकाशा सिंह की आवाज में ये गाना राइटर और मिर्ची जुड़ गई है आपके साथ। और हाँ जी, वक्त हो चला है कि जरा हम नजर डालें हमारे मौसम शौसम पर।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। वेल देखो, आप मानो या ना मानो, लेकिन मुझे हल्का सा बेटर लग रहा है दो दिन से वेदर। और आंकड़ों में भी यही कह रहा है कि 41 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम रहेगा, जो पिछले कुछ दिनों में मेरे ख्याल से दो तीन हफ्ते से 45 डिग्री तक चल रहा था, अब 41 पे हो गया है। मिनिमम जो है वो रात को 29 डिग्री तक जाएगा। इनफैक्ट ये वो टाइम है जहां पर अब भी आप मॉर्निंग इवनिंग वॉक्स कर सकते हो, है ना, थोड़ा बहुत तो कर सकते हो। इवनिंग में तो कोई मसला नहीं है, और अर्ली मॉर्निंग्स में भी अब भी आप वॉक पर जा सकते हो। हालांकि थोड़े से पसीने आएंगे क्योंकि ह्यूमिडिटी अब जो है 41% पर हो गई है, और आज तो हवाएं काफी तेजी से है, 21 किलोमीटर पर आवर पर हवाएं चल रही है। विद दिस
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100813।
0: अरिजीत सिंह की आवाज में अगला गाना माइक से दिल तक आफरीन के साथ। और मिर्ची इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Aamir Khan, PK was an iconic film. कई सारे iconic scenes थे. Which one was the most difficult? रेडियो पकड़ के खड़े रहना या फिर?
3: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई. क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ. मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है, तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे. और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है, जबान चल जाती है. उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे, थोड़ा इजीयर हो जाता था विदाउट सुपारी. चूना और कत्ता होता था.
2: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं. दिन के 100 पान कौन खाता है यार. आप सुन रहे हैं मिर्ची. इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा. बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा.
1: ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: What a beautiful song right here on Mirchi Mornings.
1: Mirchi Mornings brought to you by KIMS Health Medical Center.
0: और आपके साथ जुड़ गई है आपकी सिंपली आफरीन. और सिलसिला तो आगे बढ़ते जा रहा है फुटबॉल वर्ल्ड कप का. एंड आई एम श्योर, देखिए अगर आप पूरी तरह से मैच फॉलो नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम जोन्स का फर्क पड़ता है, लेकिन स्कोर पर तो ध्यान है ना. नहीं है तो टेंशन नॉट भाई, है ना. मैं यहाँ पर सारे स्कोर्स बराबर बताऊंगी. पहले तो मैच शेड्यूल कुछ ऐसा है कि 17 जून की अगर बात करें खास, तो आज के दिन इराक वर्सेस नॉर्वे, ठीक है, ये रात के 1 बजे ऑलरेडी हो गया, जहां पर जीत हासिल हुई है नॉर्वे की. 4 गोल नॉर्वे ने किए हैं, जहां इराक ने 1 गोल किया है. अर्जेंटीना वर्सेस अल्जीरिया, वेयर एज ये भी रात 4 बजे हमारे कतर के, ये भी मैच हुई है, जहां पर अर्जेंटीना ने 3 गोल्स किए हैं. वेल टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच विच इज Now happening, मतलब अभी होगी 7 बजे सुबह कतर के, ऑस्ट्रिया वर्सेस जॉर्डन की मैच होने वाली है. अपार्ट फ्रॉम दैट, आज के दिन 8 बजे पोर्चुगल वर्सेस कॉन्गो DR, यानी रोनाल्डो फैंस आपके लिए मैच होने वाली है आज. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया की भी मैच है रात 11 बजे. एंड समवेयर आई फील दैट मुझे अभी याद है, अगर 2018 की बात करें तो क्रोएशिया रियली इज इट गुड टीम और बिल्कुल डार्क हॉर्स की तरह आगे आगे आई है. हालांकि 2022 में भी इनकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है. सो दैट इज वन मैच आई थिंक सो आज की इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया विच इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग एज वेल. मैं हूं आफरीन आपके साथ, इसी तरह से कतर की अपडेट, दुनिया भर की अपडेट लेकर आती रहूंगी. सो यू गॉट टू स्टे ट्यून्ड विद मी, माइक से दिल तक ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे अरे मामू, मिर्ची हेल्पलाइन बता, सवाल क्या है?
0: मुझे स्टेडियम में मैच देखने तो जाना है, पर भीड़ नहीं पसंद, क्या करूं?
1: अरे तो सिंपल है ना गोचू, तू दूसरे स्टेडियम में जाके फोन में मैच देख लेना, वहाँ भीड़ होगी ही नहीं।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi One. It's hot. Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center. Mirchi. Fresh Maal.
2: मस्ती मैडनेस और जंगल के एडवेंचर के वाइब्स के साथ सुनो वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक.

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: वेलकम टू द जंगल का टाइटल ट्रैक और वेलकम टू दिस मॉर्निंग शो। आपकी सुबह वाली आदत मिर्ची मॉर्निंग्स विद आफरीन, और फिर थोड़ी देर में लेकर आ रही हूँ भाई कतर में। आप वीकेंड पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज वेनसडे है भाई, आज से प्लानिंग शुरू हो जानी चाहिए, करेक्ट। सो विद दिस थोड़ी देर में मिलती हूँ, लेकिन उससे पहले मिर्ची घड़ी का इशारा जो है वो हो रहा है सुबह के 7:04 की तरफ, और अगला गाना आई पी सिंह, जॉनिटा गांधी, असीस कौर, सुधीर यादव, और ये पूरा का पूरा जिगला है भाई, ये इतने सारे लोगों ने मिलकर ये गाना गाया है, चुनरी चुनरी, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.

अजय देखो, मुंह मीठा करने के लिए तैयार हो जाइए भाई, कोई खुशखबरी नहीं है, लेकिन खुशखबरी से कम भी नहीं है कि हमारे लिए स्पेशली जो इंडियन लिसनर्स है मेरे राइट ईयर, कि हमारे लिए वो फलों का राजा जो कहते हैं वो मैंगो है, ऑब्वियसली नॉट हमारे लिए और अक्रॉस द ग्लोब, फलों का राजा मैंगो जो है वो कतर आ रहा है इंडिया से खास। मतलब अगर आप कुछ टाइम से जानते हो तो पता रहेगा कि हर साल मैंगो एग्जीबिशन लगता है एट द ईस्टर्न स्क्वायर्स को वाकिफ, तो बस ये फिर से लौट रहा है एंड दिस इज हैपनिंग फ्रॉम टुमारो 18 जून से लेकर 27 जून। एंड लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, जो लोग इसके प्रीवियस एडिशन अटेंड कर चुके हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ पर एक बार जाने से ना बिल्कुल जी नहीं भरता, तो फिर ऐसा कुछ प्लान रखिएगा कि यहाँ पर आपको ये कितने दिन का, देखो 18 से लेकर 27 यानी बिल्कुल 10 दिन का ये पूरा एग्जीबिशन है, तो आई एम श्योर गारंटी के साथ बोलती हूँ कि भाई दो बार जाने का आपका मन करने ही वाला है, क्योंकि आप सिर्फ वहां पर मैंगो खरीदने नहीं जा रहे हो, आप वहां पर मैंगो के अलग अलग डेलिकेसीज एंजॉय करने जा रहे हो। यस, ऐसी ऐसी अलग अलग आइटम्स होते हैं मैंगो से बनी हुई जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। हाँ जी हाँ, मैंगो आइसक्रीम तो हमने सुना है, मैंगो फालूदा तो हमने सुना है, लेकिन वहां पर मैंगो के पानीपुरी भी मिल जाते हैं कभी कभार, मैंगो पिज्जा भी मिल जाता है एंड सम बिजार डिफरेंट क्विजींस, डिफरेंट आइटम्स ऑफ मेड ऑफ मैंगो। तो बस अपने जो कैलेंडर में ना ये कहीं सेट कर लीजिए, कल से शुरू हो रहा है, कहीं बाहर भी कहीं और जाने का इरादा है तो वहां से गुजरते हुए जरूर जाइएगा द इंडियन मैंगो एग्जीबिशन 2026। मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक। मॉर्निंग में जसलीन रोयल और हर्षीप कौर की आवाज का तड़का लगाते हुए, नॉन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, uscabana, sacabana, cabana, burca, burca. La virtua la burca. Milci, burca.
2: Alo? Alo?
3: Ama bai. Bai,
2: cum vă
3: la? Ama mulia am pădat ce-a dat. Alo,
2: bai, cum vă la? कौन बोल रहा है भाई?
3: अब मुझे आप बताया उसने कि तुम भी यार तुम एक नंबर का आइटम है। मेरी बात
2: नहीं आ रही भाई।
3: मुझे आप बताया असल मैं वहां गया हुआ था। अब मुझसे कह रहा
2: बता तो दे भाई, ये तो बता दे कौन बोल रहा है, क्या बात है।
3: तूने नताशा को प्रपोज कर दिया भाई सबके सामने।
2: अबे भाई कौन लताशा?
3: नताशा यार, नताशा को प्रपोज नहीं किया?
2: अबे भाई कौन लताशा, मैं तो लताशा को जानता भी नहीं।
3: तो तू पहले मुनी फाड़ सकता था
2: भाई, तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया भाई, तू तो हंसता ही रहा।
3: अबे तो तुझसे पहले नहीं बोला जा सकता था, मैं तो हंस रहा था, तू तो चुप था, बता देता मुझे। मैंने नताशा को नहीं छेड़ा, मैंने नताशा को प्रपोज नहीं किया। मैं हंसे जा रहा हूँ, हंसे जा रहा हूँ की तरह। नहीं, मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह और तू मजाक उड़ा रहा मेरी।
2: मैं कैसे बोल देता जब तू हंसे जा रहा?
3: अबे तो
2: सुनने का मौका नहीं दिया, मैं हेलो हेलो करे जा रहा हूँ।
3: तू शुरू में कह देता कि मैं नहीं बोल रहा, मैंने नताशा को नहीं छेड़ा, रॉन्ग नंबर लग गया, ये बोलने में तेरा मुंह फट रहा था क्या? 5 साल में हंसी आती है वो भी बर्बाद कर दी। तू पहले नहीं बता सकता था मुझे कि मैं नहीं बोल रहा?
2: फोन तूने करा?
3: मैंने क्या फोन, मैंने क्या? तो तेरे हाथ में तो था, तेरे मुंह में जुबान नहीं थी। तू दिमाग खराब कर रहा है ऊपर से।
2: मैं तो पूछा वो तो, तू बोल कैसे रहा भाई?
3: भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने ऐसी किसी का नंबर मिला दिया, आपका लग गया, मैं आपका मुर्गा बना रहा था, थोड़ी सी मजाक करी और वो अच्छी खासी।
2: तो भाई ये बात पहले बता देते यार, इतना तुमने हंसवा दिया, टेंशन अलग दे दिया।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखिए क्या है, कुछ रूल्स एडवांस में अगर आप जानो ना तो ये आपको घाटे से ही बचा सकती है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज की खबर में क्या है जरा देखते हैं।
2: क्या खबर कदर?
1: देखिए खबर तो ये कहती है दैट कतर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने रेसिडेंसी कैंसिलेशन के बाद मिलने वाला ग्रेस पीरियड जो होता है वो 30 दिन से घटाकर सिर्फ 14 दिन कर दिया है। यानी आपका QID अब कैंसिल हो चुका है एंड यू नीड टू टेक एन एग्जिट, तो आपके पास अब एक महीने का वक्त नहीं है, आपके पास सिर्फ 14 दिन का ही वक्त है। वहीं पर आपको यहां से निकल जाना है 2 हफ्तों में। लेकिन देखिए अगर 14 दिन के बाद स्टे होता है तो क्या ये QID होल्डर्स के लिए, तो उनको हर दिन का 10 कतरी रियाल फाइन लगेगा। ठीक है, ये तो हो गई बात QID होल्डर्स की। लेकिन ऐसे कई बार होता है कि हमारे विजिटर्स आते हैं रहने के लिए एंड कभी कभार ध्यान से निकल जाते हैं कि यार एग्जैक्टली डेट की एंट्री क्या थी और फिर एग्जिट क्या है, और हो सकता है किसी वजह से कि आप आगे की टिकट निकालते हैं उनकी एग्जिट की टिकट। तो याद रखिएगा हर ओवरस्टे के लिए आपको 200 कतरी रियाल पर डे का फाइन लग सकता है। यस, ऐसा कई बार हुआ भी है, एक दिन की वजह से चूक गए होंगे या फिर 2-3 दिन की वजह से चूक गए होंगे, लेकिन एकदम से इतना बड़ा अमाउंट फिर आपको एयरपोर्ट पर जाकर देना पड़ता है। और ऐसा होता है ना कि आप जब यहाँ से जा रहे हो तो अच्छी यादों के साथ में जा रहे हो और बड़ा स्मूथली, हु डज नॉट वॉन्ट देयर ट्रैवल टू बी एब्सोल्यूटली स्मूथ। तो जब ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो ना तो कोई भी आपके ट्रैवल में परेशानियां नहीं आएगी। और कैसे आ सकती है, हमारे हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब 76 E-gates भी आ गए हैं इमिग्रेशन प्रोसेस को सिर्फ 10 से 15 सेकंड में कंप्लीट करने के लिए, एब्सोल्यूटली फास्ट ट्रैक। मैं हूं आफरीन, आपके साथ ऐसे ही अपडेट्स ला रहे हो और बड़ा स्मूथली, हु डज नॉट वॉन्ट देयर ट्रैवल टू बी एब्सोल्यूटली स्मूथ। तो जब ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो ना तो कोई भी आपके ट्रैवल में परेशानियां नहीं आएगी। और कैसे आ सकती है, हमारे हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब 76 E-gates भी आ गए हैं इमिग्रेशन प्रोसेस को सिर्फ 10 से 15 सेकंड में कंप्लीट करने के लिए, एब्सोल्यूट

10 out of 10 क्यों नहीं चाहिए चल ओके देन भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल ही तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल

0: मिर्ची स्टोरीज बस 24 घंटे ही रहेंगी।
1: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
2: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
3: मिर्ची इट्स हॉट।
4: अर्ज किया है
5: इरशाद इरशाद।

0: IPay payments ka wah tarika. With IPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply. एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
1: Love is my biggest fear because for me love is death.
0: Witness Karishma Kapoor in her most ruthless avatar yet.
2: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी थी।
0: Catch Officer Brown.
3: Officer Brown
0: tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown streaming on Hindi Z5 from 12th June.
4: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
5: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: दर्शन रावल और असीस कौर की आवाज सुनने के बाद, ये गाना सुनने के बाद मुझे बताओ भाई, मुझे अगर कोई गुजराती सुन रहे हैं, कैसे आप गाड़ी चला पा रहे हो ये गाना सुनकर? मतलब आपको डांस करने का, गरबा करने का मन किया कि नहीं ये सुन के? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और देखिए भाई, वक्त हो चला है कि थोड़ा सा हम अब एंटरटेनमेंट तो चलते ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा आपका टेस्ट लिया जाए. समझ रहे हो ना आप, समझदार को इशारा काफी है. लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट का समय हो चला है और मैं आपको यहाँ पर एक सीन सुनाने वाली हूँ. ध्यान से सीन सुनो, ये एक ही डायलॉग है जो दो तीन बार ये सीन में, मतलब मूवी में, दो तीन भी नहीं, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा ही बार ये मूवी में आया है. एंड इट्स बिकेम पॉपुलर विद दैट मूवी, बट नॉट सो पॉपुलर एज वेल. आई डोंट नो, ये आप ही डिसाइड कीजिएगा. 5000 1896 ऐसा मेरा नंबर है. और आज का लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट का सवाल कुछ ऐसा है.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट.
2: तू बातें बड़ी अच्छी करने लग गया है.
3: मैं तो जी सच कहता हूँ, अच्छी अपने आप लग जाती है बस.
4: वाह पुत्र, बातें तो तू बड़ी अच्छी करता है.
3: ताई जी मैं तो सच बोलता हूँ, अच्छी तो अपने आप लग जाती है.
5: बातें तो तू बड़ी अच्छी अच्छी करता है.
3: हाँ जी सच बोलता हूँ जी, अच्छी तो भैया अपने आप लग जाती
0: है. बिल्कुल सही भाई, मैं भी यहाँ पर बिल्कुल सच ही कहती हूँ, अच्छी था आपको अपने आप ही लग जाती है. क्या बात करते हो, है ना. 5000 1896 इज माई नंबर, लेट्स कनेक्ट हियर. और तब तक के लिए अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है. एंड मीनवाइल यहाँ पर मैसेजेस तो बहुत आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं. यू गाइज आर सुपर स्मार्ट. हाँ, मुकुल का मैसेज आया है यहाँ पर, कुमैल का मैसेज आया है, देन आई हैव सुलेमान हियर, हुज़ैब का मैसेज आया है, चार्ली का मैसेज आया है, एंड सो मेनी मोर. काशिफ का मैसेज, एंड इट्स जस्ट फ्लडिंग, सो लेट मी गो एंड रिस्पॉन्ड टू देम. मीनवाइल नवतेज सिंह की आवाज में धुरंधर का ये गाना अनमिर्ची. इट्स हॉट.

0: Hollywood Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
2: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
1: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची ये थॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल दैट वाज करुणा ओझा की आवाज में ये गाना साथ देती हुई नेहा कक्कर राइट हियर ऑन मिर्ची। हाँ जी, और वो पहली मूवी इन आर बॉलीवुड, इन फैक्ट इन इंडिया, जिसने 99 करोड़ से ज़्यादा कमाया था। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक आप सुन रहे सिंपली आफरीन को। और ये कौन सी मूवी है ये तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में आई विल अनफोल्ड इट। कैसे, पहले डायलॉग सुनाऊंगी, फिर आपके आंसर सुनाऊंगी, फिर इसके बारे में बातें करूंगी। यस, बिकॉज यहाँ पर हम लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट खेल रहे थे ना।
0: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट।
1: यस, आज का सीन क्या है जरा सुन लेते हैं।
2: तू बातें बड़ी अच्छी करने लग गया है। मैं तो जी सच कहता हूँ, अच्छी अपने आप लग जाती है बस।
3: वाह पुत्र, बातें तो तू बड़ी अच्छी करता है।
2: ताई जी, मैं तो सच बोलता हूँ, अच्छी तो अपने आप लग जाती है।
4: बातें तो तू बड़ी अच्छी अच्छी करता है।
2: हाँ जी, सच बोलता हूँ जी, अच्छी तो भैया अपने आप लग जाती है।
1: हाँ जी, ये मूवी जो है जैकी चैन की फिल्म मिराकल जो है उसका रीमेक है, क्या आपको पता है? लेकिन कौन सी मूवी है ये, मैं थोड़ी ना बताऊंगी, तो आप बताओगे ना। That is right. It is Singh's King. अगली बार से जब भी अपना ऑडियो रिकॉर्ड करोगे ना, तो मेरा वॉल्यूम को एकदम कम कर देना, मुझे मेरी आवाज़ सुननी ही नहीं है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर यही जवाब देते हुए काशिफ ने मैसेज किया था यहाँ पर, देन आई हैव अपना नाम लिखा करो निकिता। हाँ, निकिता का भी यहाँ पर मैसेज आया है, त्रिशा का मैसेज आया है, मोहम्मद खान, वशिष्ठ, चार्ली, मुकुल, देन आई हैव कुमैलियर, सुलेमान एंड हुजैब। ये सारे लोगों ने बिल्कुल सही कहा है कि ये साफरीन जो मूवी का नाम तुम यहां पर डायलॉग सुना रही हो, दिस इज फ्रॉम सिंगिस किंग। और वो जमाने में दैट फर्स्ट मूवी जिसने 99 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार किया था। इनफैक्ट इसकी जो अर्निंग्स थी ना, ये फर्स्ट वीक के अराउंड, ये ओम शांति ओम भी उस टाइम पर ही आई थी, लेकिन उससे ज्यादा, मतलब बीटिंग द ऑल टाइम हाई फर्स्ट वीक अर्निंग्स से ज्यादा, ओम शांति ओम से ज्यादा सिंगिस किंग ने कमाया था। सो दैट इज सिंगिस किंग। एक चीज ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, दैट कटरीना कैफ लुक्ड स्टनिंग इन दिस मूवी, बड़ी क्यूट लग रही थी। अब भले ही वो तेरी और मैं सारी में क्यों ना हो, या फिर ये गाने में वो छोटा सा क्यूट पिंक फ्रॉक में क्यों ना हो, या तो वो छोटा सा मिनी ड्रेस, बड़ी क्यूट लग रही थी। लव जंजुआ और सुजी क्यू की आवाज में ये गाना। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहेगा ऑन मिर्ची।

0: यस, इट्स मिर्ची हेल्पलाइन। टेल मी।
1: यार रोज सुबह लैपटॉप लेके कुछ लिखने के लिए बैठता हूँ, नोटपैड भी खोलता हूँ, पर लिख ही नहीं पाता, क्या करूँ?
0: लिख नहीं पाता हूँ, क्या करूँ? सिंपल मैन, नया कीबोर्ड ले ले।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स

देखिए कुछ लोग होते हैं जो कॉमेडी देखकर रिलैक्स करते हैं, कुछ लोगों को रोमांटिक मूवीज का शौक होता है, तो एक और कैटेगरी है जिन्हें मर्डर मिस्ट्री, क्राइम थ्रिलर और साइकोलॉजिकल सस्पेंस में अपना एंटरटेनमेंट नजर आता है। और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो Z5 पर आई ब्राउन आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अप टू सिंपली आफ्टरनून को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और करिश्मा कपूर हमारी 90s की खूबसूरत एक्ट्रेस, शी इज बैक, लेकिन इस बार ना नॉट इन अ ग्लैमरस अवतार, दिस टाइम नॉट इवन इन अ किसी लाइट हार्टेड रोल। She steps into the shoes of Rita Brown, a tough detective investigating a high-profile murder case in the mysterious mylanes of Kolkata. देखिए ये सिर्फ एक murder mystery नहीं है, Brown is something more than that. हर character अपने secrets लेकर चल रहा होता है, हर clue एक नई layer खोलता है और हर episode आपको एक intellectual roller coaster पर ले जाता है. Well, this series Brown is directed by Abhinay Deo. The series is beautiful. It blends suspense, human psychology and social commentary. Karishma Kapoor yahan par delivers a compelling performance supported brilliantly by Surya Sharma and Jishu Sen Gupta. Dekhiye aapka idea of entertainment, if it's not just finding the killer but understanding the human mind behind the crime. Aise kuch log hote hai na jo ye crime thrillers ko bahut seriously lete, then definitely Brown on Z5 deserves a spot on your binge watch radar. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Mirci. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirci, burga.
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
2: स्पीकिंग।
3: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
2: अच्छा।
3: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
2: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था। तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया। और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
3: अरे ग्रेट। तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
2: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
3: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
2: आ सकती हूँ मैं उसमें?
3: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियाँ आएंगी। तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक?
2: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
3: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं, या हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
2: आपका क्या है?
3: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
2: ठीक है।
3: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
2: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
3: सिर तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुरी के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही है।
2: नहीं, मना क्या कर रही है, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
3: हेलो,
2: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
3: तानिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, अब इसमें मेरी क्या गलती है?
1: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

देखिए ये लव शव में हिट और मिस चलता रहेगा, लेकिन मनी मैटर्स में बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। क्योंकि सही वक्त पर सही डिसीजन लेना मनी मैटर्स में बेहद ज्यादा जरूरी होता है, और इसीलिए लेकर आई हूँ आज के एक्सचेंज रेट्स। जो ये कहते हैं दैट एक कच्ची रियाल के बदले मिल रहे हैं आपको 25.87 इंडियन रुपीस, जना पाकिस्तानी रुपीस इज एट 76.75, वही बांग्लादेशी टाका इज एट 33.77, श्रीलंकन रुपीस की बात करें तो 91.74 पर है, और नेपाली रुपीस इज एट 41.47। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां, एंड खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: It's hot.
1: Mirchi One, it's hot. Mirchi Stories.

0: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
1: तो इंतजार खत्म। RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
0: अभी कॉल करें 3100-0813।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है।

0: आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे, यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूत समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
1: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
2: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में ये गाना मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है 8:39 की तरफ और मेरा इशारा हो रहा है कि अगले कॉन्टेस्ट की तरफ।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए भाई, समझदार को इशारा काफी है कि अब आपने क्या करना है। अब आपको ये करना है कि मैं यहाँ पर एक सवाल पूछने वाली हूँ आपको, आपको एक मूवी की कहानी सुनाने वाली हूँ रादर, एंड यू हैव टू गेस आखिर ये कौन सी मूवी है। ठीक है, तो रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो बिल्कुल हाई। और ये रहा मेरा सवाल आपसे। देखिए, एक मैथ्स जीनियस है जो नंबर से दोस्ती करता है पर लाइफ उसके साथ फेयर कैलकुलेशन नहीं करती। फॉरेन स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस होते हैं पर पैसा और सर्कमस्टांसेस उसका इक्वेशन बिगाड़ देते हैं। वो कोचिंग इंडस्ट्री देख के समझता है कि एजुकेशन भी लग्जरी आइटम बन चुकी है। तब वो डिसाइड करता है कि IIT का सपना सिर्फ पैसे वालों के लिए नहीं होगा। फिर वो स्टार्ट करता है खुद के 30 अंडरडॉग स्टूडेंट्स का मिशन, छोटे घर के बड़े सपनों के साथ, जीरो रिसोर्सेज के साथ, लेकिन फुल डिटर्मिनेशन वाले ये स्टूडेंट्स के साथ वो ये अपनी कोचिंग शुरू करता है। और उसके उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, करप्ट सिस्टम, कोचिंग माफिया, टैक्स स्ट्रगल्स और बहुत कुछ। आप बताइए कौन सी मूवी की बात कर रही है आफरीन यहाँ पर। 5001896 इज माई नंबर राइट हियर एंड यू हैव फ्लडेड माई व्हाट्सएप हियर विद मैसेजेस। मोहम्मद यूसुफ खान, विवेक, जाहिद एंड सो मेनी मोर हैज मैसेज हियर। मैं जाकर उन्हें रिप्लाई करती हूँ, तब तक के लिए आप अगला गाना सुनिएगा माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: Nimrat Kaur, I loved you in Lunchbox. अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
2: ओह, अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
1: निमरत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अर्ज किया है
4: इरशाद, इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: एकदम सही सुना तुमने. किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन. कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं. बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो.
2: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ. बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वरुण जैन और शिल्पा राव की आवाज में खूबसूरत सा गाना। और हाँ जी भाई, हम तो यहीं पर हैं हर रोज तुम्हारे साथ, और तुम्हारे साथ ही रहेंगे हम। वेरी गुड मॉर्निंग कदर एंड वेलकम बैक मिर्ची मॉर्निंग्स पर, स्वागत है आपका। बात हो रही है यहाँ पर एक मूवी की, जिसका मैंने सवाल पूछा था, आपने गैस करना था कि कौन सी मूवी, ये समझाने की कोशिश कर रही है आफरीन। सिंपल सुपर डुपर इजी, यहाँ पर आप लोगों ने आंसर भी दिया है, तो ऐसे कहा है कि क्या आफरीन, कितना इजी है ये, व्हाट इज दिस इज, ठीक है, कभी इजी कभी डिफिकल्ट ऐसा होगा, ताकि सभी को यहाँ पर खेलने का मौका मिले। ये तो कुछ लोग होते हैं कि आफरीन तो बहुत डिफिकल्ट पूछती है, इसलिए हम खेलेंगे ही नहीं, तो आज तो सबने खेलना है ना फिर। ऑल राइट, कहानी कुछ ऐसी है, एक मैथ्स जीनियस है जो नमस से दोस्ती करता है, पर लाइफ उसके साथ फेयर कैलकुलेशन नहीं करती। फॉरेन स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस होते हैं, पर पैसा और सर्कमस्टांसेस उसके इक्वेशन को बिगाड़ देते हैं। वो कोचिंग इंडस्ट्री देख के ये समझता है कि भाई अब तो एजुकेशन भी लग्जरी बन चुकी है। तब वो डिसाइड करता है कि जो IIT के सपने हैं वो सिर्फ पैसे वाले बच्चों तक सीमित नहीं होने चाहिए। फिर स्टार्ट होती है 30 अंडरडॉग स्टूडेंट्स का मिशन, छोटे घर के बड़े अपने, जीरो रिसोर्सेज लेकिन पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत दिल लगा के मेहनत करके ये पढ़ाई करते हैं बच्चे, और इन्हें कोच करते हैं ये सर। बस इसकी ये पूरी मूवी थी, और इसके जो एक्टर थे सुपरस्टार एक्टर, फेनोमिनल एक्टिंग, लेकिन मूवी पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी, हालांकि मूवी अच्छी थी। 5000186 इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, मैसेजेस का यहाँ पे एकदम ज़्यादा पूरी की पूरी तरह एक अटैक किया है आप लोगों ने। मनाली का मैसेज, ताहिर का मैसेज, ऋतिक रोशन का मैसेज, तुम्हारा नाम बताओ ना, मोहम्मद अब्बास, ठीक है, विवेक का मैसेज, जाहिद का मैसेज एंड सो ऑन। वो लोग जिन्होंने यहाँ पर अपना नाम मेंशन नहीं किया है, सभी ने ये कहा है कि ऋतिक रोशन की ये मूवी सुपर 30, ये मूवी का नाम, और आफरीन ये रहा तुम्हारा जवाब। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर मैसेजेस, बिल्कुल सही जवाब है। एंड ऋतिक रोशन, सीरियसली ये मूवी में एक बिहार एक्सेंट पकड़ने की वो कोशिश किए हैं उन्होंने, एंड नॉट बैड, आई मीन फेयर इनफ, बट फर्स्ट टाइम ना ऋतिक रोशन को इतने ज़्यादा गरीब अवतार में देखा है, बिकॉज ऋतिक रोशन नाम में इतनी रोशनी, शक्ल से ऐसे लगती है कि ये बहुत ही अमीर और बहुत ही क्लासी है, कभी ऋतिक रोशन को ऐसे गरीब कैरेक्टर नहीं प्ले करते हुए देखा है, हमेशा से वो एक स्वैग वाला, एक अलग ही क्लास वाला है ना। लेकिन आई लाइक दिस साइड ऑफ ऋतिक रोशन एज वेल, ही इज डन जस्टिस टू इट। उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में आई लव दिस ट्रैक ऑफ दिस मूवी सुपर 30।
2: से हुआ तेरे नजदीक है दिल के मोहल्ले में सब ठीक,
1: जब भी उदित नारायण की आवाज सुनो तो मुझे 90s वाले गाने की ही फील आती है ना। एंजॉय दिस ट्रैक माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है?
0: हम लोग ऑफ रोडिंग पे हिमाचल आए हैं और कार का टायर फ्लैट हो गया है, क्या करें?
1: अबे लल्लू ये तो अच्छी बात है ना, टायर फ्लैट हो गया है, फ्लैट तो रेंट पे चढ़ा ना, टूरिस्ट प्लेस पे रेंट भी तो कितना अच्छा मिलेगा।
2: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स

0: आनंद राजानंद रुबाई की आवाज में ये गाना राइट चेयर ऑन मिर्ची फ्रॉम द न्यू मूवी वेलकम टू द जंगल। और भाई वेलकम टू माय शो मिर्ची मॉर्निंग्स। इस शो का आखिरी घंटे में हमने एंटर कर चुके हैं विद द क्लॉक सेइंग कि भाई आफरीन वक्त हो रहा है 9:05।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: देखो भाई एक अलग ही सीजन चल रहा है मेरे ख्याल से बॉलीवुड में। अलग अलग टाइप की मूवीज आर लाइंड अप। जैसे अभी वेलकम टू द जंगल की हमने बात की है, ये अपने आप में एक अलग ही जॉनर है, टोटली केओटिक कॉमेडी मूवी। जो हम जानते हैं जहां अक्षय कुमार होते हैं वहां पे केओस तो होता ही है, कन्फ्यूजन भी बहुत सारा होता है और उनके साथ अगर परेश रावल भी जुड़ जाए तो बस खलास। सो बस एक केओटिक कॉमेडी मूवी विद अ ह्यूज एंसेंबल। आई मीन माय गॉड, आई जस्ट वांट टू स्टार्ट, माय शो विल एंड। वेलकम टू जंगल में बहुत बड़ा स्टार कास्ट है। उसके अलावा एकदम परे, उससे परे एक और मूवी आ रही है, दैट इज कॉकटेल 2। शाहिद कपूर, कृति सनन, रश्मिका मंदाना एंड ऑल दिस, ये सारे लोग हैं। वैसे वाली मतलब फर्स्ट कॉकटेल की ही वाइब्स दे रही है, ट्रेलर्स एग्जैक्टली सेम, मतलब मुझे ऐसा वाइब पूरी कॉपी पेस्ट वाली लग रही है। लेकिन मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार ये मूवी क्या है। तो रोमांटिक जो मूवीज में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं उनके लिए ये है। लेकिन वो लोग जिनके अंदर एहसास, इमोशंस और वो कहते हैं ना लॉन्गिंग फॉर लव, ये सारा कुछ है ना, तो भाई इम्तियाज अली इज फॉर यू। एंड मी बीइंग अ ह्यूज ह्यूज ह्यूज फैन, एसी जो भी कहिए आप ऑफ इम्तियाज अली, मैं तो पूरी तरह से कहूंगी कि जाओ और देखो, मैं वापस आऊंगा। व्हाट अ मूवी मैन, मतलब मैंने देखा नहीं है, मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज उसके सुने हैं और मैं कल रात को देखने जाऊंगी ना, तब मैं उस आकर संडे को उसका रिव्यू दूंगी। लेकिन उससे पहले शायद मैं स्टोरीज में अपने रिव्यू डाल दूंगी। लेकिन यस, मैं वापस आऊंगा दिलजीत दोसांझ की ये मूवी, जहां पर आपको नसीरुद्दीन शाह नजर आएंगे एंड एवरीवन इज जस्ट इन प्रेजेस ऑफ नसीर साहब। एंड व्हाई नॉट, ही डिजर्व्स इट ऑल। एंड वो बस अगर कोई स्क्रीन पे ना उनका एक मिनट या दो मिनट का भी स्क्रीन प्रेजेंस होता है ना, ही मेक्स श्योर दैट ही मेक्स अ मार्क in your mind forever, and that's what he's done in this movie. मैं वापस आऊंगा। दिलजीत दोसांझ तो है ही, वेदांग रायना is a surprise package for everyone us. मतलब हम सोचे ये लड़का कौन है, देखा देखा ऐसा लग रहा है भाई, कहीं तो देखा है इसको हमने, और एकदम से ये आ गया ये मूवी में लीड रोल में। कौन है ये? अरे ये वो ये आर्चीज में था, छोटे मोटे रोल में था वहां पर, लेकिन उसके बाद में जिगरा में था, ये आलिया भट्ट का भाई बना था। भाई बंदा अच्छा एक्टर है, बस उसका वो खानदान फिल्मी नहीं है तो क्या करे, एक्टर भी है सिंगर भी है। सुन लो अब, आई जस्ट लव दिस ट्रैक ऑफ दिस मूवी, शर्वरी आई लव योर नखराज इन दिस सॉन्ग। या निलंजना घोष ने बहुत ब्यूटीफुली गाया है एंड वेदांग रैना ने बहुत दिल से गाया है ये गाना। मेरी चाह, एंजॉय दिस ट्रैक ऑन मिर्ची। थॉट

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vie de la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: बेटा आप घर आ जा, मामा परेशान है, खाना खा ले, ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आ जा।
2: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
3: बेटा आ जा, नहीं आ जा, आ जा, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
2: हेलो बेटा, अरे अंकल आप ये तो बताइए बोल कौन रहे हो?
3: देख आपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते बेटा, एक तो बुढ़ापे में तो ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते और तू चला जाएगा।
2: अंकल मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
3: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
2: अरे अंकल ये तो बताइए आप बोल कहाँ से रहे हो?
3: बेटे ऐसे नाराज होते हैं तो जानते
2: हैं। अंकल मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है।
3: बेटे नहीं ऐसे ये नाराजगी होती है तो ऐसे घर छोड़ कर जाते हैं।
2: माता जी से बात करा दीजिए।
3: बेटे आजा आजा बेटे।
2: अंकल माता कहाँ है?
3: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
2: छाता नहीं अंकल, माता आप अपने कान के बात।
3: बेटे कोई गलती हुई है देख तो बेटे माफ करा दे, ऐसे नहीं जाते।
2: अंकल मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
3: अरे बात मेरे बात,
4: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
3: हेलो, हेलो
2: अंकल आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
3: वैसे घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
2: अरे अंकल मेरे बात का बेटा नहीं हूं मैं।
3: अगर आप मुझे आ जाएगा तो आज
2: आपने नंबर क्या मिलाया अपने बेटे को?
3: बेटा तेज बोल, भाई जी जो चाहिए दे देंगे।
2: अरे अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
3: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे।
2: क्यों?
4: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो भाई?
2: भाई मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया चीख चीख के।
4: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई, अब धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
2: बोलना जरूरी है?
4: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
3: आवाज नहीं आई, तेज बोल।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi Mornings, brought to you by KIMS Health Medical Center.
1: देखिए, जब भी हम कोई नए कंट्री में या फिर कोई नए शहर में जाते हैं तो गूगल मैप्स हमें रास्ता तो दिखा देता है, लेकिन उस जगह की असली कहानी एक सही टूर गाइड ही सुनाता है। और कतर टूरिज्म ऐसे ही स्टोरी टेलर तैयार कर रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक, आप सुन रहे सिंपली आफरीन को। और खबर कुछ ऐसी है दैट कतर टूरिज्म ने टूर गाइडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इसके रजिस्ट्रेशंस ओपन कर दिए हैं। 18 साल या उससे ऊपर के रेसिडेंट्स और सिटीजन्स के लिए 5 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक जनरल लाइसेंसिंग मॉड्यूल कंडक्ट किया जाएगा। प्रोग्राम कंप्लीट करने पर पार्टिसिपेंट्स को कतर टूरिज्म की तरफ से ऑफिशियल टूर गाइड का लाइसेंस भी मिलेगा। वेल, इसके साथ ही 13 से लेकर 17 साल के यंगस्टर्स जो है इनके लिए भी यूथ टूर गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम ये 18 जुलाई से लेकर शुरू होने वाला है, और 8 से 12 साल के बच्चों के लिए भी है। इनफैक्ट हाउ इंटरेस्टिंग, नहीं, यंग टूर गाइड समर कैंप ये 19 जुलाई से लेकर 27 अगस्त तक चलेगा। मतलब बच्चों को समर्स में अगर आप कहीं प्लान नहीं कर रहे हो तो बिजी रखने का बहुत ही अच्छा तरीका ये भी है। एंड स्पेशली नाउ ना फीफा वर्ल्ड कप के बाद जब कतर में हुआ, दुनिया भर में लोगों को लगा कि यार कतर क्या चीज है, देखना चाहिए। तो बस जब कोई विजिटर यहाँ पर आए तो कोई उनसे सूक वाकिफ की कहानी बताए, पर्ल डाइवर्स की कहानी बताए, हमारे कतर में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बदला है उसकी सारी कहानी बताए, तब जाके हमारे कतर की अहमियत और भी ज्यादा कोई विजिटर के सामने बढ़ जाएगी, है ना। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट अराउंड मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार COD तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज़ साथ देती हुई जॉनिटा गांधी, लैला मजनू का ये खूबसूरत सा गाना और एक खूबसूरत सी बात आपसे कहना चाहूँगी जो आप और मैं हम सभी रिलेट कर पाते हैं इससे। देखिए हम सभी खुश हैं, लेकिन कभी ना कभी एक कुछ तो कमी हमें महसूस होती है ना जिंदगी में, और वो ना शब्दों में जाहिर नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली क्या है। बस आफरीन की डायरी से शायरी नहीं, कुछ लाइंस लेकर आई हूँ आज
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो वो कुछ ऐसी है कि ऐसा तो नहीं कोई गम है जिंदगी में, फिर भी लगता है कुछ कम है जिंदगी में। इस पल में तसल्ली है, सबर है, कुछ दोस्तों के होने का शुक्र भी है, पर कहीं ना कहीं इस तसल्ली के पीछे छुपी आने वाले कल की फिक्र है। कुछ सपने हैं जो पूरे करने हैं, कुछ मुश्किल फैसले हैं जो खुद के लिए लेने हैं, कुछ लड़ाइयां हैं जो दुनिया से लड़नी है अपने आप के खातिर, कुछ बेचैनियां हैं जो शब्दों में नहीं कर पाते साहिर, पर खैर ऐसा तो नहीं कोई गम है, फिर भी लगता है कुछ कम है, है ना। हमेशा जिंदगी में सब होने के बावजूद भी खाली खाली ऐसा क्यों लगता है। प्रॉबेबली अब हम मोमेंट में जीना तो सीख गए हैं, लेकिन साथ ही साथ कल की फिक्र भी कभी छोड़ते नहीं है। मिर्ची पर आप सुन रहे हो आफरीन को, माइक से दिल तक।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
3: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
2: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

मोहित चौहान की आवाज, अंतरा मित्रा का साथ। और पता है क्या, जब भी मैं इन्हें मिलती हूँ, मतलब 5 साल हो गए हैं, दे ऑलवेज सरप्राइज मी। वो कहते हैं ना, अपने हाथ की 5 उंगलियां अलग होती है, उसी तरह से ये मॉमीज जो है सब अपने आप में अलग है, लेकिन एक कॉमन चीज इनमें है, एंड दैट इज लव, द वार्मथ, द एम्पैथी दे शेयर। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट हमारे मिर्ची मॉमी के कॉन्टेस्टेंट्स जो कल आए थे हमारे मिर्ची स्टूडियोज रिहर्सल्स के लिए आए थे, और रिहर्सल्स का पूरा जो तामझाम है और वो सारा कुछ एक्शन है, आप ना इंस्टाग्राम पर स्टोरीज पर चेक कर सकते हो। वैसे मिर्ची 1 कतर पर जाकर आप स्टोरीज पर देखोगे, फिलहाल स्टोरीज आपको नजर आएगी और कल के रिहर्सल्स की सारी खबर वहां पर है। वेल, टॉकिंग अबाउट दीज मदर्स आउट हियर, एक चीज है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि कॉमन है, जब ये सारी एक साथ आती है ना, द ब्यूटीफुल थिंग इज के ऐसे ऑब्वियस कॉम्पिटिशन जो होता है वो बिल्कुल नजर नहीं आता है। एंड रिहर्सल्स और ये जो बैक स्टेज जो एक बॉन्ड होता है ना, वो उनको और करीब लाता है। एंड दिस इज व्हाट एज मदर्स वी टीच टू आर किड्स एज वेल, कि यार कॉम्पिटिशन जो होता है वो अपनी जगह पर होता है, पर वो एक पूरे लम्हे को जीना कैसे है, ये कोई इन मदर्स से सीखे। एंड दैट इज व्हाट ये हमारे कॉम्पिटिशन में भी, जो मेन ग्रैंड फाइनल है तभी भी दर्शाया जाएगा, और ये थ्रू आउट जो हमारे सेशंस चल रहे हैं, आई कैन फील दैट। सो कुडोज टू ऑल द मॉमीज आउट देयर, एंड कुडोज एक्स्ट्रा फॉर ऑल द मिर्ची मॉमी सीजन 5 कॉन्टेस्टेंट्स आउट देयर। सो वेल, जो सीजन फिनाले है वो होने वाला है 20th, यानी ये सैटरडे 20th ऑफ जून, एंड मम्मीज आर सुपर एक्साइटेड, सुपर प्रेप, जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। भाई, हम 5वें सीजन तक पहुंच गए हैं, थैंक्स टू यू सारे लिसनर्स आउट देयर, सारे मम्मी पापा बच्चे, सारे मिर्ची लिसनर्स जो हर साल मिर्ची के हर एक इवेंट को इतना ज्यादा प्यार देते हैं। एंड ऑफकोर्स, हाउ कैन दिस इवेंट बी पॉसिबल विदाउट अ लवली स्पॉन्सर्स आउट देयर। सो बस स्पॉन्सर्स की तो बहुत ही बड़ी लिस्ट है मेरे पास, लेकिन कुछ मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पर। नॉट फॉरगेटिंग आई पे प्रेजेंस मिर्ची मॉमी अवार्ड्स, हमारे स्पॉन्सर्स में पापा जॉन्स है, बलादना है रिफ्रेशमेंट पार्टनर, शुगर फ्री पार्टनर, ट्रॉपिकाना स्लिम रेस्टोरेंट पार्टनर, चस्का रेस्टोरेंट आईवेयर पार्टनर, अल्फा हद ऑप्टिक्स हाइजीन पार्टनर, हाइजीन वेन्यू पार्टनर, अबू सुत्रा मॉल फ्रेग्रेंस पार्टनर, फरीदी परफ्यूम्स, जूर्जी पार्टनर स्काई ज्वेलर्स, एंड विजुअल मीटनर पार्टनर दैट इज रिहाब मीडिया। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। और बस इसी के साथ हम ये गाना अगला सारे मॉमीज को डेडिकेट करना चाहेंगे। यो, शंकर महादेवन की आवाज, कल होना होगा ये गाना, फॉर ऑल द प्रिटी वुमन आउट देयर। माइक से दिल तक आफरीन की तरफ से ये गाना आपको, ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: साहब जी, ये मिर्ची हेल्पलाइन है
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: ओ साहब जी, नूडल्स का एक पैकेट बनाओ तो कम पड़ता है और दो बनाओ तो बहुत ज्यादा होता है, तो क्या करूँ?
1: सिंपल है, तू कस्टमर को ऑर्डर पूछ के बनाना, वो बोले उतना ही बनाना।
2: रख, रख।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।
4: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर।
5: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल।

0: एक बात बताओ, आज घर से निकलते वक्त तुमने क्या सोचा था?
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. नहीं, कहने का मतलब कुछ तो सोचा होगा ना कि कौन सा प्रेजेंटेशन है, क्या काम पूरा करना है, किससे मिलना है, क्या सामान लाना है, कोई तो प्लानिंग होगी। अगर नहीं है तो लोग बात कहते हैं कि ऐसी प्लानिंग जो है दिन में करके रखना चाहिए, दिन जो है काफी सिस्टमैटिकली बीतता है। लेकिन इस बात से ना मैं थोड़ा डिसएग्री करती हूँ। माना कि दिन को प्रॉपरली प्लान करना जरूरी है, लेकिन जिस पल जिस मोमेंट में हम मौजूद हैं उसे दिल से जीना भी जरूरी है। चलो माना कि तुम जो है किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो या किसी सफर पे जा रहे हो, किसी को लेकर जा रहे हो, भाई जो कर रहे हो उसे एक बार महसूस करने की तो कोशिश करो। अगला काम जो है वो तो होगा एंड उसके बाद अगला काम भी होगा एंड ये सिलसिला जो है वो चलता जाएगा, लेकिन उस अगले काम के चलते ये पल भी चला जाए, ये कहाँ तक सही है ना। तो इतना ही कहना चाहूंगी, दिन को कुछ इस तरह से बिताएं कि आगे की प्लानिंग के साथ इस पल को ऐसा प्लान करें कि हर पल तुम्हारा जो है ना वो बेहद खास बने। अच्छी खासी गाड़ी, फेवरेट रेडियो स्टेशन, फेवरेट आरजे, और क्या चाहिए तुम्हें। इस पल को एंजॉय करो एंड जल्दी से मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज भेजो 5000 1896। लेट्स गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कथरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La vizba la burka. Mirchi, burka.
2: Hello. Hello.
3: Hello, Mr. Anil.
2: हाँ जी
3: मिस्टर अनिल, तीनों आ गए हैं।
2: तीनों आ गए
3: सर, मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ। आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की, तो सर तीन है हमारे पास, आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं।
2: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
3: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर।
2: हाँ जी, फिर
3: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद, एक सेकंड रुकिए।
2: हेलो,
3: हाँ सर एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद। हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ, आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है।
2: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है, कोई आप गलत मिला है।
3: गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है, बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी।
2: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई।
3: तो अनिल जी, आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भरी है यहाँ पे आके।
2: कौन बोल रहे भाई?
3: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं, तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं।
2: भड़क आप रहा हूँ भाई, क्या तरीका है,
3: क्या तरीका
2: कर रहा है आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो?
3: अनिल बंसल आप ही हैं?
2: अनिल बंसल मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है।
3: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं। अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
2: आप पहले कंफर्म तो करो, कम से कम
3: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार आप। एक बच्चा तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार,
2: बात करो, एक तरीका बात करने का
3: यार, तरीका आप।
4: ओ बच्चा चुप हो जाओ, वो गुस्सा आ गया उनको।
3: यार अनिल जी कमाल कर दिया आपने,
2: मैं काम कर रहा हूँ बैठा हुआ, आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ
3: सर। मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है, आपको जो पसंद आता है।
2: आप कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, मुझे नहीं चाहिए।
3: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार, आप अपनी बात करो यार।
2: तुमने सर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवा दूंगा बच्चा, समझ गया?
4: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है। अनिल जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया।
2: यार कमाल कर दिया भाई, भाई कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: यार सच कह रही हूँ, गर्मी के दिनों में ना ये दोनों ही चीजें काफी मुश्किल है।
1: मिर्ची अंशु
0: पहली बाहर निकलना और दूसरी पार्किंग ढूंढना। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, इस वक्त लगता है कि ओल्ड दोहा पोर्ट ने दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन हमारे लिए निकाल ही दिया है। वेल, इस समर ओल्ड दोहा पोर्ट लेकर आए हैं एंटरटेनिंग एक्टिविटीज की पूरी सीरीज, जो काफी सारे न्यू एक्सपीरियंसेस देने के लिए हमें पूरी तरह से तैयार है। एंड ये चलेंगे 15th ऑफ अक्टूबर तक। तो अगर आपको लगता है इवनिंग में आउटिंग या फैमिली टाइम या दोस्तों के साथ चिल करने का आपको प्लान बनाना है, तो बिल्कुल ओल्ड दोहा पोर्ट आप 101% पहुंच ही सकते हैं। अगर अच्छी कंपनी चाहिए तो मिर्ची की पलटन जो है पूरी तरह से आप तक पहुंचने के लिए तैयार। खाने पीने का इंतजाम जो है वो बस आप कर लें। लेकिन अगर पार्किंग की बात करें तो मीना डिस्ट्रिक्ट रोड एक्सेस अब डेली दोपहर 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक व्हीकल्स के लिए ओपन रहेगा। मतलब अब पार्किंग का ये जो टेंशन है ये जिंदगी में जरा कम हुआ। एंड सबसे खास बात ये है, अगर मैं वॉले पार्किंग की बात करूं तो अब रेगुलर रेट्स की आधी प्राइस में आप पार्क कर पाएंगे। इनफैक्ट कुछ रिटेल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज तो ऐसे हैं जहां पे अगर आप मिनिमम स्पेंड करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री वॉले पार्किंग आपको मिल ही जाएगी। बढ़िया जी, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सारे के सारे न्यू एक्सपीरियंसेस ओल्ड दोहा पोर्ट में मिलेंगे। जाइए इस गर्मी के दिनों में, वो ठंडी का मजा जो है उठाई लीजिए, कलेजे की ठंड उसी की बात करें। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
0: मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन

0: शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान सबके गाने आएंगे दीदी,
1: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

यार ये जो आम है ना, आपको खास एक्सपीरियंस देना बहुत अच्छी तरह से जानता है। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। यार बस फलों के राजा यानी कि आम, मैंगोज की बात कर रही हूँ मैं। ये बात तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत में तकरीबन 1000 से ज्यादा मैंगो की वैरायटीज जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं। अल्फांजो, केसर, लंगड़ा, दशहरी, बादामी और क्या नहीं। और हर एक आम जो है अपनी एक अलग सी खास पर्सनैलिटी लेकर आता है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत में एक ऐसा आम प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें इकलौते पीस का वजन जो है तकरीबन 3 से 3.5 किलो होता है और एक इस आम की कीमत जो है ना वो हजारों में होती है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नूर जहान मैंगो, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है मध्य प्रदेश में। भाई मतलब

आम ही जो है वो बिल्कुल रानियों वाला है, इसीलिए इसे भारत में क्वीन ऑफ मैंगोज भी कहा जाता है। वेल, अगर आपको लगता है कि भारत के ढेर सारे लेजेंडरी मैंगो से आपकी मुलाकात हो ही जाए, एक बार फिर से आप जो है अपने स्मेल सेंसेशन का इस्तेमाल करते हुए पता कर लें कि कौन सा आम जो है कितना मीठा है, तो सीधा आपको अगर कहीं पहुंचना है तो वो है सुक वाकफ ईस्टर्न स्क्वायर, 18th ऑफ जून से लेकर 27th ऑफ जून तक आप इंजॉय कर पाएंगे हम्बा एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज बाय द एम्बेसी ऑफ इंडिया कतर, एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। चलिए जी, आम के रसीले पदार्थ एक बार फिर से जिंदगी में शामिल करने की बारी जो है ना वो आ ही चुकी है। अभी फिलहाल जिंदगी में मिठास बनाए रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, इट्स हॉट, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
3: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। तो एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
2: दिस इज एन ऑडियो इम्पर्सनेशन, बट आई हैव टू से गुलशन ग्रोवर, इट इज 100 on 100 इम्पर्सनेशन ऑफ संजय दत्त। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.

पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा।

0: हरगिज झुकेगा नहीं साला।
1: यार सच कहूं वो भी क्या दिन थे।
2: मिर्ची अंशु मिर्ची अंशु मिर्ची अंशु मिर्ची अंशु।
1: हे वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। यार जिंदगी में ना बहुत लोग मिलते हैं, कुछ लोग कई बार बस सफर में मिलते हैं और गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग दिल में घर बना जाते हैं। स्कूल के वो दोस्त याद है जिनके साथ टिफिन शेयर किया, पनिशमेंट शेयर की, सीक्रेट भी शेयर की एंड कभी कभी होमवर्क भी कॉपी किया। क्या दिन थे यार। एंड फिर आए वो कॉलेज वाले दोस्त जिनके साथ सपने देखे, स्ट्रगल शेयर किए, कैंटीन की एंडलेस वो चाय पे चर्चा की और लाइफ के सबसे खूबसूरत पलों को बस जी लिया, साथ ही यादें भी बना ली। यार सच कहूं वक्त बदल जाता है, शहर बदल जाते हैं, हमारी प्रायोरिटीज जो है ना वो भी कभी कभी बदल जाती हैं, लेकिन असली दोस्त जो हैं वो कभी नहीं बदलते। माना कि कुछ वक्त के लिए, अरसे के लिए हम अपनी अपनी ज़िंदगी में कहीं खो जाते हैं, लेकिन एक बार फिर अगर उस स्कूल या कॉलेज के दोस्त का फ़ोन आ जाए ना, ज़रा देखो सिलसिला वहीं से शुरू होता है जहाँ पे ख़त्म हुआ था, जैसे कभी रुका ही नहीं। बस आज उन्हीं दोस्तों की याद आई यार, तो क्यों ना उस दोस्ती के नाम एक शायरी जो है वो अर्ज की जाए। देखो दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा ही मुस्कुराने का, ये कोई पल भर की पहचान नहीं, दोस्ती तो वादा है उम्र भर साथ निभाने का। तो अगर लगे कि कोई दोस्त जो है इस वक्त याद आया तो उसे मैसेज या कॉल जरूर करना, एंड अगर लगे कि मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ तो एक गुड मॉर्निंग या हेलो का मैसेज ही भेजना। 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल एंजॉय बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मेरे घर का एसी खराब हो गया है, कब से लैंडलॉर्ड के पीछे पड़ा हूँ, वो ठीक ही नहीं करवा रहा, क्या करूँ?
1: क्यों थक रहा है? अरे तो दूसरा लैंडलॉर्ड ढूंढ लेना।
2: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: फिर क्यों ना इस वक्त कॉफी के कप के पहले जरा पानी की ग्लास को जिंदगी में शामिल कर लिया जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Ajay Anshu with you. यार हम में से कई सारे लोग ना जब भी थकान लगती है इंस्टेंटली ये सोचने लगते हैं कि शायद आज नींद नहीं हुई है। हो सकता है ये सच हो लेकिन हो सकता है ये गलत भी हो क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कई बार थकान की वजह सिर्फ लैक ऑफ स्लीप नहीं होता। भाई साहब हो सकता है आप जो है फुल्ली डिहाइड्रेटेड हो तो अगर आपको लगे कि आपको बिना वजह हेडेक हो रहा है फोकस नहीं हो रहा या एनर्जी लो लग रही अरे नाना तुम्हारी बीवी या बॉस ने कुछ गलत नहीं कहा है हो सकता है बॉडी जो है वो सिंपली पानी मांग रही हो तो जब जब थकान हो वो चाय या कॉफी के मग के पीछे भागने के बजाय ना फटाफट से पानी के ग्लास को जिंदगी में शामिल करना एंड प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए पानी के साथ साथ इन दिनों इतनी गर्मी में भाई साहब छाछ भी जरूरी है कोकोनट वाटर भी जरूरी है कुल मिलाकर इलेक्ट्रोलाइट्स जो है अपने अप्रोप्रिएट बॉडी में शामिल रखें बाकी आपके कलेजे दिमाग के ठंडक के लिए एक ही काम करना है टिक के बने रहना है सुनते रहना है कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट एंजॉय बंदी का नाम अंशु

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. Hello? Hello?
2: Ama bhai, tum...
1: भाई कौन बोल रहा है?
2: अब मुझे अब पता चला
1: भाई कौन बोल रहा है? हेलो कौन बोल रहा है भाई?
2: अब मुझे मुझे अब बताया उसने कि तू भी यार तू एक नंबर का आइटम मेरी
1: भाई
2: मुझे अब बताया असल मैं वहां गया हुआ था अबे मुझसे कह रहा
1: बता दो भाई भाई ये तो बता दे कौन बोल रहा है क्या बात है हाँ भाई मुझे
2: तूने नताशा को प्रपोज कर दिया भाई सबके सामने
1: अबे भाई कौन नताशा
2: नताशा यार नताशा को प्रपोज नहीं किया
1: अबे भाई कौन नताशा मैं तो नताशा को जानता भी नहीं
2: तो तू पहले मुंह नहीं फाड़ सकता था
1: भाई तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया भाई तू तो हंसता ही रहा
2: अबे तो तुझसे पहले नहीं बोला जा सकता था मैं तो हंस रहा था तू तो चुप था बता देता मुझे मैंने नताशा को नहीं छेड़ा मैंने नताशा को प्रपोज नहीं किया मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह नहीं मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह और तू मजाक उड़ा रहा मेरी
1: मैं कैसे बोल देता जब तू हंसे जा रहा हूँ सुनने का मौका नहीं दिया मैं हेलो हेलो करे जा रहा हूँ
2: तू शुरू में कहता कि मैं नहीं बोल रहा मैंने नताशा को नहीं छेड़ा रॉन्ग नंबर लग गया ये बोलने में तेरा मुंह फट रहा था क्या पांच साल में हंसी आती है वो भी बर्बाद कर दी तू पहले नहीं बता सकता था मुझे कि मैं नहीं बोल रहा
1: फोन तूने करा तूने
2: मैंने क्या फोन मैंने क्या तो तेरे हाथ में तो था तेरे मुंह में जुबान नहीं थी तू दिमाग खराब कर रहा है ऊपर से
1: मैं तो पूछा वो तू बोल कैसे रहा भाई
2: भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैंने ऐसी किसी का नंबर मिला दिया आपका लग गया मैं आपका मुर्गा बना रहा था थोड़ी सी मजाक करी और वो अच्छी खासी
1: तो भाई ये बात पहले बता देते यार इतना तुमने आसवा दिया टेंशन अलग दे दिया
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट एक सीरियल किलर एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी
3: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ मी लव इज डेड
0: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट
4: गलती भी हमारा जिम्मेदारी भी हमारा
0: Catch Officer Brown. Officer Brown. Tearing through the city of Joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June.

0: ताजा खबर, ताजा खबर।
1: मिर्ची अंशु।
0: देखिए बात इतनी है कि आज की ये खबर शायद हेडलाइंस में छोटी लगे, लेकिन कई फैमिलीज में इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा है। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वल इस वक्त कतर की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हाई एजुकेशन ने गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले कुछ नॉन कतरी स्टूडेंट्स के लिए टेक्स्ट बुक और स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फी एग्जेम्पशन को एक्सपैंड कर दिया है एंड दो कैटेगरीज को इस एग्जेम्पशन लिस्ट में ऑफिशियली ऐड किया गया है। नंबर वन, होल्डर्स ऑफ कतरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स एंड नंबर टू, होल्डर्स ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड्स। यानी अगर कोई स्टूडेंट इन कैटेगरीज में आता है तो उसे अब गवर्नमेंट स्कूल्स में टेक्स्ट बुक्स और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं देना होगा। यार बात इतनी है ना कि कभी कभी एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी सिर्फ क्लासरूम्स बनाने से नहीं बढ़ती, कभी कभी एक छोटी सी या सिंपल सी पॉलिसी चेंज भी किसी फैमिली के फाइनेंशियल बर्डन को काफी हल्का कर देती है। एंड ये बात जो है कतर ने हमें जरूर बताई है, जिस तरह की हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जिस तरह के एजुकेशन बेनिफिट्स हमें यहाँ मिलते हैं ना भाई साहब, ऐसा लगता है कि जो ख्वाहिशें थी, जो मुरादें थी, हमारे सपने थे, वो साकार होने में यहाँ की लीडरशिप और इस देश ने काफ़ी बड़ी हेल्प की। दिल से सलाम, बड़ा वाला थैंक यू। बच्चों को कहें अच्छे से पढ़ें एंड आप उन्हें पढ़ाते रहें, लेकिन इस वक्त अपनी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट के खजाने को खोलने के लिए टिक्के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट। बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
2: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
7: खूब मिलेगा, मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: यार मतलब अमन माथुर का किरदार कोई और निभाए ना यार, ये तो नहीं हो सकता।
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। यार बॉलीवुड की कई फिल्में ना हमारी जिंदगी में सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे नहीं आती, बल्कि जिंदगी जीने के मायने को वो सिखा ही जाती हैं। और उनमें से ये एक ऐसी फिल्म है जो शायद अरसों तक, सालों तक हमेशा हम सभी याद रखेंगे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कल हो ना हो। साल 2003 में रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जिसे निखिल आडवाणी ने डायरेक्ट किया, यश जौहर ने प्रोड्यूस किया, एंड क्या गजब की कहानी बाय करण जौहर। भाई साहब कई बार ना ये ऐसी कहानियां लिखते हैं जो पूरी तरह से दिल को छू जाती है यार। सैफ अली खान, प्रीति जिंटा एंड साथ हमारे अमन माथुर यानी कि शाहरुख खान, क्या बेहतरीन किरदार। लेकिन क्या आपको एक बात पता है, निखिल आडवाणी का ये डायरेक्टोरियल डेब्यू था, एब्सोल्युटली बतौर डायरेक्टर उनकी ये पहली फिल्म, और इस फिल्म के चलते उन्होंने एक ऐसा इंप्रेशन हम सबकी जिंदगी में छोड़ा कि इसे शब्दों में बयां किया जाए तो कैसे किया जाए। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमन माथुर के किरदार के लिए सबसे पहले शाहरुख खान को नहीं सेलेक्ट किया गया था, ये रोल सबसे पहले ऑफर हुआ था सैफ अली खान को। उसके बाद अजय देवगन को भी कहीं ना कहीं इस किरदार के लिए कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन ना जाने क्यों कैसे जो भी हुआ, लेकिन फाइनली अगर इस किरदार में कोई आए तो वो है शाहरुख खान। और आज की डेट में जब हम आंखें बंद करते हैं ना तो ऐसा लगता है यार अमन की वो आंखें, अमन की वो बातें, अमन की वो इमोशंस, क्या कोई और उस इंटेंसिटी से निभा पाता। आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान के अलावा कोई और है जो इस किरदार को इतनी इंटेंसिटी के साथ पूरा कर पाता? 5001896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल इस फिल्म का टाइटल ट्रैक एंजॉय करते हैं, बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
3: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
2: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: चलिए इस वक्त आपकी जिंदगी में जरा सा तड़का लगा लिया जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. यार गर्मी में ना हम अक्सर एक्सपेंसिव एनर्जी ड्रिंक्स या तो फिर फैंसी कूलर्स ढूंढते रहते हैं, लेकिन आपको पता है हमारे घर में एक ऐसा सुपर ड्रिंक है जो जेनरेशन से हाइड्रेशन का चैंपियन रहा है, और मैं बात कर रही हूँ छास यानी बटर मिल्क की। और आज अंशु की स्पेशल रेसिपी मैं आप तक पहुंचाने वाली हूँ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मसाला छास विथ अ तड़का। भाई ज्यादा कुछ नहीं करना है, 2 चम्मच दही लेना है, उसमें अच्छा सा पानी डालना है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा एंड साथ ही कुछ फ्रेश पुदीने के पत्ते, और इन सबको कर लेना है अच्छे से ब्लेंड। अगर आपको ठंडी ठंडी छास पसंद है तो खूब सारा आइस जो है ना वो डाल ही देना। लेकिन अब यहाँ पर आता है एक सीक्रेट वाला ट्विस्ट, जहाँ पे तड़कती भड़कती गर्मी में क्यों ना जरा सा तड़का हम लगा लें। अगर आपको लगता है कि आपको मसाला छास पसंद है तो बस तड़के के लिए जरा सा घी, उसमें सरसों का दाना, जीरा और इसके अलावा थोड़ी सी हींग। जैसे ही तड़का है, क्रैकल करने लगे, निकाल लें एंड इसे अपने छास में मिला दें। भाई उसके बाद ये जो मैजिकल ड्रिंक आता है ना, ये सिर्फ हाइड्रेशन नहीं बल्कि आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एंड अगर आपको लगा कि रेसिपी पसंद आए, अगर आप ट्राई करना चाहेंगे और क्लैरिटी चाहिए तो बस 5000 1896 पर मुझे मैसेज करिए, डिटेल रेसिपी मैं आपको भेज देती हूँ। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: यार सच कह रही हूँ, कतर की जो गर्मी है ना, ये बिल्कुल उस रिलेटिव की ही तरह है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. भाई वही रिलेटिव जो दो दिन के लिए कहे लेकिन रहे तीन से चार महीने तक। नहीं, पहले के दिनों में, पहले के ज़माने में ऐसा ज़रूर हुआ करता था। अगर आज की डेट में हम घर से बाहर निकलते हैं तो कई दफ़ा ऐसा फील होता है कि भाई आज तो वेदर जो है ज़रा सा ठीक है, लेकिन जैसे ही आप कार तक पहुँचते हैं ना, लगता है कि किसी ने अवन जो है प्री हीट करके हमें अंदर डाल दिया हो। और अगर आज आप घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को अपने साथ ज़रूर लेकर चलना है, आपका फ़ोन, आपका वॉलेट, आपकी कीज़ एंड सबसे ज़रूरी भाई साहब पेशेंस, क्योंकि इस गर्मी ने कुल मिलाकर हम सबको ऐसा हिलाया है ना कि इसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। आंकड़ा जो है बिल्कुल 50 तक पहुंच चुका है, टेम्परेचर यानी कि डिग्रीज की बात कर रही हूँ। एंड जरा देखिए ये क्या ही कहते हैं।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
0: वेल, आपका नाम भी जानते हैं, आपके कारनामे को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अपडेट तो मैंने आप तक पहुंचा दिया, लेकिन सबसे खास बात जिसे आपको अपडेटेड रखनी है वो ये कि खुद को फुल्ली हाइड्रेटेड रखना है। पानी पीजिए, जूस पीजिए, इलेक्ट्रोलाइट वाटर पीजिए, जो भी करिए, लेकिन अपने दिमाग को ठंडा रखिए। बाकी आपके कलेजे के ठंडक के लिए मैं हूँ, टक्के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।
3: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100 0813. देखो

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
1: Mirchi, murga. हेलो,
2: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
1: स्पीकिंग।
2: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
1: अच्छा।
2: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
1: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था, तो तान्या ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया।
2: ओह गॉड।
1: और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
2: अरे ग्रेट। तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
2: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
1: आ सकती हूँ मैं उसमें?
2: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियाँ आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक।
1: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
2: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं या हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
1: आपका क्या है?
2: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
1: ठीक है।
2: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
1: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
2: सिर तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुर के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही है।
1: नहीं, मना क्या कर रही है, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
2: हेलो,
1: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
2: तानिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, अब इसमें मेरी क्या गलती है?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: देखो कुछ करो या ना करो, लेकिन ऐसे दोस्तों से सतर्क जरूर रहो।
1: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू।
0: वैसे मैंने सुना है कि ऐसा कोई ट्रेंड चला है कि लोग जो है उधार लेते हैं, लेकिन ना अब की बार उधार ये वापस भी देते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि अगली बार तुमसे पैसा फिर लेना है। उधार तब लेते हैं जब एक्सचेंज का रेट जो है काफी कमाल चल रहा हो, एंड जैसे ही रेट जरा सा कम आए ये तुम्हें लौटा देते हैं। अरे नाना, मैं अपनी बात नहीं कर रही, अपना सेटलमेंट अपन बाद में करेंगे, मैं तो जस्ट अलर्ट कर रही हूँ। जरा देखिए आज आईपे मनी में पैसा क्या ही बोलता है। वैसे अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 25.87, साथ ही पाकिस्तानी रुपीज 76.75, बांग्लादेशी टाका 33.77, लंकन रुपीज 91.74 एंड नेपाली रुपीज 41.47। तो बस किसी और को देने के बजाय जब एक्सचेंज रेट अच्छा हो तो फटाफट से अपने अकाउंट में पैसे भेज दो, खुशियां ढेर सारी ले आओ। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार COD तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
4: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: देखो घर में किसी और को हिसाब किताब पता हो या ना पता हो, लेकिन इन्हें पाई पाई का हिसाब पता है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. भाई पैसे के हिसाब किताब की बात हो एंड मम्मी का नाम सबसे ऊपर ना आए तो फिर किसका आए? जरा पापा बोल कर तो देखें कि पता नहीं यार पैसे कहाँ गए। मम्मी जो है आपकी तुरंत बोलेंगी 17 मार्च को जो ऑनलाइन ऑर्डर किया था बस उसमें गए। एंड मम्मीज की सीक्रेट सेविंग स्पॉट्स की बात करें, चाय पत्ती का डब्बा, आटे का वो कंटेनर, वार्डरोब का थर्ड शेल्फ या तो फिर ऐसी जगह जहाँ CID क्या कोई ना पहुँच पाए। यार सच कहूँ हाउसहोल्ड फाइनेंस मैनेजमेंट पर अगर PhD की बात हो ना तो हमारी मम्मियों ने जरूर उसमें गोल्ड मेडल ले रखा है। Having said that, अगर स्मार्ट मनी मैनेजमेंट की बात करें तो मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5 के प्राउड पार्टनर iPay भी हमारी जिंदगी में ऐसे कोई स्मार्ट सॉल्यूशंस लेकर आए। अब ट्रांसफर फी फिक्स नहीं है, iPay में अगर आप कम पैसे भेज रहे हैं तो कम फी पे करनी पड़ेगी। 5, 10, 15 या 20 अमाउंट के हिसाब से आपकी ट्रांजेक्शन फी लगेगी। एंड एक्सचेंज रेट्स भाई साहब क्या कमाल, मतलब ये पूरी की पूरी डील जो है ये पॉकेट फ्रेंडली भी है एंड वैल्यू पैक्ड भी है। तो मैं तो सोच रही हूँ मम्मी के फाइनेंशियल सुपर पावर्स को सैल्यूट करते हुए अपने ट्रांसफर्स को भी अब आप जो है ना स्मार्ट बनाइए iPay के जरिए। स्टूडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: Hollywood, Bollywood, Bold Eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Aamir Khan, PK was an iconic film. कई सारे iconic scenes थे. Which one was the most difficult? रेडियो पकड़ के खड़े रहना या फिर?
3: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई. क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ. मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है. तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे. और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है, जबान चल जाती है. उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे, थोड़ा इजी हो जाता था विदाउट सुपारी. चूना और कत्ता होता था.
2: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं. दिन के 100 पान कौन खाता है यार? आप सुन रहे हैं मिर्ची. इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्ड आई. बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड आई.
1: ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: यार सच कह रही हूँ, इस सवाल से बड़ा ना कोई दूसरा सवाल हो ही नहीं सकता।
1: मिर्ची अंशु।
0: और वैसे ये सवाल ऐसा है जो हर घर में जरूर पूछा जाता है। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यानी कि बस ये कि आज खाने में क्या बनाना है, एंड सच कहूँ दूसरा सवाल भी है कि आज टिफिन में क्या डालना है। मतलब इन दो सवालों ने ना महिलाओं की जिंदगी में इतना कोहराम मचाया हुआ है कि बताएं तो क्या ही बताएं। यार कहीं ना कहीं जैसे ही एक बजने लगती है ना, मेरा दिमाग जो है सिर्फ एक टॉपिक के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, एंड वो है फूड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे ना वक्त के हिसाब से भूख लगती है ना, मुझे ऑर्गेनिकली नेचुरली भूख नहीं लगती। अगर मैं घड़ी के कांटे में ना देखूं ना 3 बजे तक भी कि 1 बज चुके हैं, तो नहीं मुझे भूख नहीं लगेगी। सो फाइनली आज के खाने में क्या है, ये वाला मसला जो है मेरा सुबह सुबह हल हो चुका था। एंड आज अगर मैंने कुछ बनाया तो वो है राजमा एंड चावल। आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके लंच के प्लान्स क्या हैं? आप कलीग्स के साथ एंजॉय करने वाले हैं, कहीं बाहर जाने वाले हैं, घर से टिफिन का डब्बा लेकर आए हैं? अगर डब्बा लाए हैं तो बताना जरूर कि आज खाने में क्या बनाए। क्या पता आपके आइडिया से मेरा कल का सोल्यूशन जो है वो निकल ही जाए। 5000 1896 वी विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम @mirchi1katariya @mirchianshu। मुलाकात होगी कल सारी बातों के साथ, इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। मीनवाइल यू ऑल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: 90s का एक्शन देख देख कर जब हम पले बड़े तो हमें रियलाइज नहीं हुआ कभी कि यार ये जो एक्शन किया करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ फिल्म के लिए है। हम हमेशा इतने ज्यादा मेस्मराइज रहा करते थे कि ओहो हीरो क्या मारता है यार, क्या लड़ाई है, डुशुम बिशुम। लेकिन जब मौत का कुआं बचपन में देखा करते थे और जो मैंने अब बड़े होने के बाद देखा, भाई दोनों ही मेरे एक्सपीरियंसेस में जमीन आसमान का फर्क आ गया।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. And वाकई में यार, I mean, मौत का कुआ जब हम बचपन में देखा करते थे तो हम इतने excited रहा करते थे और हमेशा mesmerized कि वाह यार ये बंदा कैसे बाइक चला रहा है यार, ऐसी जगह पे दीवार पे बाइक चला रहा है, फिर गाड़ी भी आ जाती थी उसके अंदर। अब जब बड़ी हुई ना मैं, और अभी कुछ टाइम पहले एक्चुअली मौका मिला मुझे, एक लोकल मेला लगा हुआ था जब मैं हैदराबाद गई थी और वहाँ पर मौत का कुआं लगा हुआ था, तो हम सारे कजिन्स ने बोला यार बचपन की यादें ताज़ा करते चलते मौत का कुआं देखने के लिए। आई स्वेयर वो मौत का कुआं वाकई में मुझे मौत का कुआं लगा। बचपन में हम सिर्फ नाम से खेला करते थे कि अरे यार मजा आएगा, मरता थोड़ी है कोई। लेकिन जब मैंने वो मौत का कुआं देखा, आई मीन पहले तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां मेरी ढाई हो गई। दूसरी बात ये कि जब मैंने उन बंदों को बाइक चलाते हुए देखा, बिना हेलमेट के देखा, और मैंने ये देखा कि ये हाथ छोड़ छोड़ के बाइक चला रहे हैं, तो मेरी तो सांसें अटक गई यार। ऊपर से वो बंदा जो कार चला रहा था, वो कार से बाहर निकल के कार चला रहा था, हाथ हिला हिला के कार चला रहा था, पैसे अपने हाथों से कलेक्ट कर करके कार चला रहा था। और वहां पर बाइक एक या कार एक नहीं थी, बाइक्स भी दो तीन थी और कारें दो थी। दैट वॉज अनबिलीवेबल फॉर मी। एंड मैं सही बता रही हूँ, पूरे टाइम आई वॉज नॉट एट ऑल मेस्मराइज्ड दिस टाइम। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना दिल थाम के बैठी हुई थी और दुआ कर रही थी कि बस अल्लाह मियां यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक्शन सीन्स 90s की दौर में जब हीरो किया करते थे और फिर हम जब उसी से रिलेट करते हुए ये एक्शन इकलौता जो हमारी लाइफ में रियल हुआ करता था वो देखा करते थे तो बड़े खुश हो जाया करते थे। अब ना बाबा ना, हिला के रख दिया था मुझे इस एक्सपीरियंस ने, और मैंने और मेरे कजिन ने भी डिसाइड किया अब कभी मौत का कुआं नहीं देखेंगे रे बाबा। इनफैक्ट आई ऑल्सो समवेयर फील कि द एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू जस्ट स्टेप अप अ बिट एंड टेक अ कॉल ऑन द सेफ्टी पर्सपेक्टिव ऑफ द मौत का कुआं, बिकॉज आई फील फॉर दोज पीपल जो ये काम कर रहे हैं। देर इज अ लॉट ऑफ सेफ्टी एक्शंस जो रेगुलेट कर सकते हैं एंड स्टिल दिस बिजनेस कैन गो ऑन। आई होप समवन इज लिसनिंग टू मी और ये एक्शन ले ले। बढ़िया, जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए आपसे कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskaba na puskaba na sakaba na. Rabala. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: बेटा अब घर आजा, मामा परेशान है, खाना खा ले, ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आजा।
2: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
3: बेटा आजा, देख आजा आजा, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
2: हेलो बेटा, अरे अंकल आप ये तो बताइए, बोल कौन रहे हो?
3: देख अपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते बेटा, एक तो बुढ़ापे में तू ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते, और तू चला।
2: अंकल मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
3: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
2: अरे अंकल ये तो बताइए आप बोल कहाँ से रहे हो?
3: बेटे ऐसे नाराज होते हैं तो जानते।
2: अंकल मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है।
3: बेटे देख ऐसे ये नाराजगी होती है तो ऐसे घर छोड़ कर जाते हैं।
2: माता जी से बात करा दीजिए।
3: बेटे आजा आजा बेटे।
2: अंकल माता कहाँ है?
3: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
2: छाता नहीं अंकल माता, आप अपने कान के बात।
3: बेटे कोई गलती हो या देख तो बेटा माफ कर दे, ऐसे नहीं जाते।
2: अंकल मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
3: अरे बात मेरे बात,
4: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
2: हेलो
3: बेटे। हेलो
2: अंकल, आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
3: बेटे घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
2: अरे अंकल मेरे बात कर, बेटा नहीं हूं मैं।
3: अगर आप तू आ जाएगा तो आज
2: आपने नंबर क्या मिलाया? मैं
3: तो कान में सुनाई दे बेटा, तेज बोल भाई जी, जो चाहिए दे देंगे। आजा बेटे।
2: अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
3: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे।
4: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो भाई?
2: क्या भाई, मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया चीख चीख के।
4: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई, अब धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
2: बोलना जरूरी है?
4: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
3: आवाज नहीं आई, तेज बोल।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मेरे यार की शादी है ये फिल्म देखने के लिए ना पूरी बारात गई थी हम कजिन्स की। सीरियसली गर्मियों की छुट्टियों का टाइम था और हम ये मूवी सब एक साथ देखकर आए थे। इस फिल्म की याद कुछ और ही है इस वजह से।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। अब देखो मेरे लिए एक्सपीरियंस अलग है लेकिन मूवी का एक्सपीरियंस अलग है। एंड ये फिल्म जिसमें की ट्यूलिप जोशी लीड कर रही हैं, एक्चुअली यही रोल अमीषा पटेल को ऑफर किया गया था लेकिन तब तक तो वो सुपर स्टार हो गई थी, उनके पास टाइम नहीं था एंड उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इस फिल्म को करने से बिकॉज उनको ये लगा कि यार इस फिल्म में एक्ट करने से कोई मतलब नहीं है बिकॉज इसके अंदर एक फ्लॉप एक्टर है और उनके करियर की सिर्फ शुरुआत है। वो फ्लॉप एक्टर जिसके बारे में वो बात कर रही थी, दैट वाज उदय चोपड़ा। फिर तो ऑफकोर्स ट्यूलिप जोशी अमीषा पटेल की जगह आ गई लेकिन इसका जो असर हुआ वो ये हुआ कि उदय चोपड़ा इस स्टेटमेंट को लेकर बड़े गुस्से में थे। इनफैक्ट एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बोला था कि इस एक्ट्रेस के साथ यशराज बैनर कभी काम नहीं करेगा। एंड बिहाइंड द सीन्स की अगर बात की जाए ना तो यार वो गाना तो हम सभी को याद है कि हम दोनों जैसा है कौन यहाँ। ये गाना जब शूट हो रहा था तो पीछे एक बड़ा सा बोर्ड है जिसको इन्होंने हाईलाइट नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई, कुछ एडिट्स वेडिट्स का प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये बोर्ड ना बहुत ही दिमाग लगा के बनाया गया था। वो बोर्ड नहीं होता जिसमें फॉर्मर पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं उनके नाम होते हैं, तो इस बोर्ड के ऊपर विनर्स के नाम थे, विनर्स जोड़ी के नाम थे फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1988। और पता है ये जो जोड़िया थी ये कहां से निकल के आ रही थी? यशराज बैनर की मूवी के बनी हुई जो फिल्में थी। 1989 की बात करें तो चांदनी के कैरेक्टर्स जो ऋषि कपूर और श्रीदेवी ने प्ले करे थे, रोहित और चांदनी, उनके नाम लिखे हुए थे। अगर 1991 की बात करें तो लम्हे मूवी जो कि अगेन यशराज बैनर की थी, उसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी के कैरेक्टर्स वीरेन और पूजा के नाम लिखे हुए थे। देयर वाज 1993 के डर के कैरेक्टर्स राहुल और किरण, DDLJ के कैरेक्टर्स के नाम राज और सिमरन, ये वो जोड़ियां थी जिनको कि उस बोर्ड के ऊपर हाईलाइट किया गया था जिसमें निशा राहुल ये भी पीछे नहीं थे। फ्रॉम दिल तो पागल है, मोहब्बतें से आर्यन और मेघा भी वहां पे मौजूद थे। आदित्य और सुहानी साथिया से इनके नाम भी वहां मौजूद थे फॉर द ईयर 2002। और ऐसे कर करके यशराज बैनर्स की जो ये सारी फिल्में थी उनके जो मेन लीड्स थे, जो मेन कपल्स थे, उनके सबके नाम लिखे हुए थे एज द विनर्स ऑन दैट बोर्ड। सैडली उसे हाईलाइट क्यों नहीं किया, वो वाकई में इतना हाईलाइट पॉइंट था क्योंकि मुझ जैसे जो फिल्मी लोग है ना हमें ये डिटेलिंग बड़ी पसंद आती है। चलो जी अभी के लिए यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Ja Simran, ja jeele apni zindagi. Ja beta, ja.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
3: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
4: हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मेरे यार की शादी है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग. बस इसी फिल्म से इंस्पायर हुई थी ये.
0: मिर्ची चैट रूम.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और हम मासूम से लोग, जब मेरे यार की शादी आई थी, एट दैट टाइम जब इस फिल्म को देख रहे थे, हमें नहीं पता था कि देयर इज एन इंग्लिश मूवी जिसको कि देखने के बाद मेरे यार की शादी बनाई गई थी. एंड जब मैंने ये इंग्लिश मूवी देखी स्टारिंग जूलिया रॉबर्ट्स, जो 1997 की एक हॉलीवुड फिल्म थी, आई वॉज इन लव विद द मूवी यार. दो मैंने मेरे यार की शादी देखी हुई है स्टिल, बिकॉज ऑफ कोर्स इंग्लिश मूवी में ड्रामा कम और इमोशन ज्यादा थे. इट्स जस्ट दैट कि उसी चीज को अगर हम इंडियनाइज कर देंगे और उसके अंदर खूब ड्रामा और पूरा फैमिली ड्रामा भर देंगे, तो वो कैसी निकल के आएगी? बिल्कुल मेरे यार की शादी है जैसी निकल के आएगी. वेल स्टिल, मतलब ये बात जानने में कि मेरे यार की शादी है इज अ कॉपी ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, मुझे काफी साल लग गए ये सफर तय करने में, बिकॉज दैट वाज अ टाइम जब मैं सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड मूवीज देखा करती थी. एंड लेटर ऑन हमारी जिंदगी में हॉलीवुड कहीं आया थैंक्स टू द चैनल्स जो केबल में इंट्रोड्यूस हुए थे, स्पेशली HBO. बट डिड यू नो कि ये जो मूवी थी, ये प्रीतम दा और जीत गांगुली का पहला मेजर प्रोजेक्ट था एज म्यूजिक डायरेक्टर्स. एंड इन्होंने एज अ डुओ काम किया था. उनके कंपोज किए गए साउंड ट्रैक्स तो सुपर हिट रहे यार, बिकॉज द एल्बम ऑफ दिस मूवी इज जस्ट अमेजिंग. लेकिन इस फिल्म के बाद प्रीतम दा ने अलग करियर स्टार्ट किया और जीत गांगुली अलग काम करने लग गए. बट मजे की बात तो ये हुई कि थैंक गॉड कि प्रीतम दा ने अपने करियर के पहले मेजर प्रोजेक्ट में किसी दूसरे गाने से इंस्पिरेशन नहीं ली. फिल्म तो ऑलरेडी किसी दूसरी स्टोरी से इंस्पायर्ड थी, एटलीस्ट गानों ने तो ये काम नहीं किया. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: निमृत कौर, आई लव्ड यू इन लंच बॉक्स। अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
4: ओह, अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा, 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
3: निमृत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: साहब जी, ये मिर्ची हेल्पलाइन है
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: ओ साहब जी, नूडल्स का एक पैकेट बनाओ तो कम पड़ता है और दो बनाओ तो बहुत ज्यादा होता है, तो क्या करूँ?
1: सिंपल है, तू कस्टमर को ऑर्डर पूछ के बनाना, वो बोले उतना ही बनाना।
2: रख, रख।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: जमता था रंग जब मिल बैठते थे तीन यार, राजा, रैंचो और हमारा टेलीविजन सेट।
1: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और राजा और रैंचो एक ऐसी अद्भुत कहानी थी, एक ऐसा शो था जहां एक बंदर रैंचो और डिटेक्टिव राजा प्लेड बाय वेद थापड़, इनकी जोड़ी मिलकर क्राइम केसेस सॉल्व किया करते थे, वो केसेस जो पुलिस भी सॉल्व नहीं कर पाती थी। और क्या इंटरेस्ट लेकर हम देखा करते थे यार इस शो को ऑन डीडी मेट्रो। आई यूज्ड टू बी डन विद माय होमवर्क ऑन टाइम सो दैट टीवी देखने को मिले और राजा और रैंचो मिस ना हो जाए। एंड एट दैट टाइम एक्चुअली एनिमल वीडियोस और मंकीज के मैनरिज्म्स ऑब्जर्व करती हुई रील्स देखने को नहीं मिलती थी ना, तो एक बंदर एक इंसान के साथ दोस्ती का रिश्ता कैसे निभाता है ये देखने में ना मुझे बहुत ही मजा आया करता था। इट यूज टू बी वेरी एंटरटेनिंग, मोर सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि देयर वाज अ बंदर एक्टिंग इन द शो। एंड शो हालांकि राजा और रैंचो पर था, लेकिन मेरे लिए हीरो तो रैंचो था, बॉस, हु वाज एक्चुअली नोन एज द वंडर मंकी। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello. Hello.
2: Hello, Mr. Anil.
1: हाँ जी
2: मिस्टर अनिल, तीनों आ गए हैं।
1: तीनों आ गए
2: सर, मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ। आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की, तो सर तीन है हमारे पास, आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं।
1: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
2: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर।
1: हाँ जी, फिर
2: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद, एक सेकंड रुकिए।
1: हेलो,
2: हाँ सर एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद। हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ, आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है।
1: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है, कोई आप गलत मिला है।
2: गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है, बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी।
1: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई।
2: तो अनिल जी, आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भर गया यहाँ पे आके।
1: कौन बोल रहे हैं?
2: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं, तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं।
1: भड़क आप रहा हूँ भाई, क्या तरीका है,
2: क्या तरीका
1: कर रहा है आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो?
2: अनिल बंसल आप ही हैं।
1: अनिल बंसल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी से कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है।
2: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं। अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
1: आप पहले कंफर्म तो करो, कम से कम
2: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार आप। एक बच्चा, तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार,
1: बात करो, एक तरीका है बात करने का
2: यार, तरीका आप।
3: ओ बच्चा चुप हो जाओ, वो गुस्सा आ गया उनको।
2: यार अनिल जी कमाल कर दिया आपने,
1: मैं काम कर रहा हूँ बैठा हुआ, आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ
2: सर। मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है, आपको जो पसंद आता है
1: कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, मुझे नहीं चाहिए।
2: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार, आप अपनी बात करो यार।
1: तुमने सर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा बच्चा, समझ गया?
3: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है। अनिल जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया।
1: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को भाई,
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म यस बॉस इज डेडिकेटेड टू ऑल दोस सिंगल्स हुव गिवन अप होप कि वो लोग कभी प्यार ढूंढ पाएंगे अपने लिए। अरे चिल यार, एक दिन आप भी अपने पार्टनर के लिए यही गाना गाने वाले हो कि एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और देखो यार, अभी तो पार्टनर इन क्राइम ढूंढने की बारी आ चुकी है मेरी। और मेरे पार्टनर इन क्राइम होते हो आप जब मुझे खेलना होता है मान ना मान करो गानों की पहचान। सो बेसिकली आज के वो दो गाने जिनकी धुनें मैंने आपस में मिक्स कर दी हैं ताकि आप उन्हें पहचानने की कोशिश कर पाओ आर दीज टू।

और अब बस सिंपल सा काम करना है जो हम हर रोज करते हैं, और वो ये है कि आपको मुझे डीएम करना है ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, आपका नाम, आपके शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे भेज दो। एंड जस्ट इन केस अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको कोई हिंट दे दूं, तो चलो ठीक है यार, इन दोनों ही गानों में वो एक्ट्रेस है जिनके आते ही सबको कह दिया जाता है Guess who? Stay tuned with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कोयला मूवी का एक गाना था बदन जुदा होते हैं। वेल ये गाना शायद हमें आज याद भी है और नहीं भी है, हमने कभी सुना और उसको अनसुना भी कर दिया, लेकिन इस गाने में एक म्यूजिक का पीस है जो कि मूवी में भी काफी सारे सीन्स में फिर इस्तेमाल हुआ है। और ये जो म्यूजिक का पीस है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है, लेकिन यही म्यूजिक का पीस ओरिजिनल नहीं है बाबू मशाय।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और राजेश रोशन की दी गई म्यूजिक का ये जो गाना था, विच गोज दिस वे।

is actually not an original piece of music. Vangelis karke, there was this music composer jisne bahut hi khoobsurat music diya hai. And inke music se Rajesh Roshan aksar kafi inspired rahe hain. सिर्फ वैंगलिस का यही म्यूजिक का पीस ही नहीं, उन्होंने काफी सारे और म्यूजिक के पीसेस भी उठाए हैं अपने गानों के लिए. एंड ये वाला जो म्यूजिकल पीस है दैट इज कॉल्ड कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज, व्हिच साउंड्स जस्ट ब्यूटीफुली अमेजिंग.

अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि 90s या अर्ली 2000 की कोई फिल्म या गाने कहीं से कट कॉपी पेस्ट है तो डीएम कर दीजिएगा मुझे ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bordai.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
3: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
2: This is an audio impersonation, but I have to say, Gulshan Grover, it is 100/100 impersonation of Sanjay Dutt. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot.
0: Bollywood Bordai. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordai.
1: Only on Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मेरे घर का एसी खराब हो गया है, कब से लैंडलॉर्ड के पीछे पड़ा हूँ, वो ठीक ही नहीं करवा रहा, क्या करूँ?
1: क्यों थक रहा है? अरे तो दूसरा लैंडलॉर्ड ढूंढ लेना।
2: साले का खोपड़ी तोड़ ले, खोपड़ी तोड़ साले का।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: वो कर्ल्स जिनको कि आज भी केमिकल लगा लगा के धो दिया जाता है, 90s के दौर में ऐसे कर्ल्स हुआ करते थे जिनको हम कह सकते हैं दीज आर रॉ कर्ल्स।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड आई क्लियरली कैन नॉट बिलीव कि आज के दौर की लड़कियां जो है उनको उठाकर अगर हम 90s में डाल दें और कहें कि तुम्हारे पास कोई केराटिन का ट्रीटमेंट नहीं है, कोई स्ट्रेटनर नहीं है, आपके पास ये जो कर्लर्स वर्लर्स है और जो जितने भी फैंसी चीजें आज हमारे पास हमारी वैनिटी में है अपने बालों को एकदम टिप टॉप रखने के लिए, वो नहीं है तो क्या हो यार दुनिया का। बिकॉज 90s का दौर वो दौर था जहां पर लुक्स एकदम रॉ हुआ करते थे। बालों को तो आज भी मुझे याद है कैसे रखा जाता था कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आई एम श्योर एक ब्रश मार दिया जाता होगा यार, एंड दैट्स अबाउट इट। हीरोइन रेडी है शॉट के लिए बॉस। और वो कर्ल्स जो बिल्कुल रॉ हुआ करते थे, बिल्कुल ड्राई हुआ करते थे, कहीं ऐसा नहीं लगता था कि उसके ऊपर जेल अप्लाई कर दिया गया या कुछ और अप्लाई कर दिया गया है। उन रॉ कर्ल्स के दीवाने सभी हुआ करते थे, माधुरी दीक्षित के कर्ल्स हो, जूही चावला के कर्ल्स हो या फिर पूजा भट्ट के कर्ल्स हो। पर धीरे धीरे करके वो कर्ल्स जो है वो स्ट्रेटन होते गए विद टाइम, जैसे जैसे हेयर प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होते गए वैसे वैसे वो कर्ल्स जो है वो गायब से होते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट आज के दौर में तो मुझे लड़कियां जो नॉर्मल चलती हुई सड़क पर नजर आती है ना, उनके भी कर्ल्स नहीं नजर आते हैं यार। And I feel really sad about it because I miss those curls, यार वो heavy curls जिससे बालों का volume क्या next level रखता था। I'm sure कोई ना कोई ऐसी लड़की जिसके पास वो curls है वो मुझे सुन रही होगी, तो मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहूंगी यार कि ये curls नायाब है, इन्हें straighten मत करो, क्योंकि आजकल तो सभी के बाल straighten है। तुम्हारे बाल सबसे अलग है जिनमें curls है, और हम naturally straight बालों वालों से पूछो कि हमें curls कितने पसंद आते हैं, तड़पती हूँ मैं कि किसी तरीके से मेरे पास भी ये curls आ जाए यार। So yeah, be proud of your curls and please don't straighten them with all these chemical treatments. We love you the way you are and you should also love yourself the way you are, yaar. You tune in with me, Sara, aapki 90s ki yaadon ka pitara on Mirchi. It's hot.

0: Profit Milchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virpa la burka.
1: Milchi, burka. Hallå? Hallå?
2: Ja, vad fan är det?
1: Michael,
2: vad är det här? Ja, vad
1: Michael,
2: vad är det
1: här? कौन बोल रहा है भाई?
2: अब मुझे आप बताया उसने कि तू भी यार तू एक नंबर का आइटम है। मेरी
1: भाई
2: मुझे आप बताया असल मैं वहां गया हुआ था। अब मुझसे कह रहा
1: बता तो दे भाई ये तो बता दे कौन बोल रहा है क्या बात है।
2: तूने नताशा को प्रपोज कर दिया भाई सबके सामने।
1: अबे भाई कौन लताशा?
2: नताशा यार, नताशा को प्रपोज नहीं किया?
1: अबे भाई कौन लताशा? मैं तो लताशा को जानता भी नहीं।
2: तो तू पहले मुंह नहीं फाड़ सकता था?
1: भाई तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया भाई, तू तो हंसता ही रहा।
2: अबे तो तुझसे पहले नहीं बोला जा सकता था? मैं तो हंस रहा था, तू तो चुप था। बता देता मुझे, मैंने नताशा को नहीं छेड़ा, मैंने नताशा को प्रपोज नहीं किया। मैं हंसे जा रहा हूँ, हंसे जा रहा हूँ की तरह। नहीं, मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह और तू मजाक उड़ा रहा है मेरी।
1: मैं कैसे बोल देता जब तू हंसे जा रहा?
2: अबे तो
1: सुनने का मौका नहीं दिया, मैं हेलो हेलो करे जा रहा
2: हूँ। तू शुरू में कह रहा था कि मैं नहीं बोल रहा, मैंने नताशा को नहीं छेड़ा, रॉन्ग नंबर लग गया, ये बोलने में तेरा मुंह फट रहा था क्या? 5 साल में हंसी आती है वो भी बर्बाद कर दी। तू पहले नहीं बता सकता था मुझे कि मैं नहीं बोल रहा?
1: फोन तूने करा, तूने करा।
2: मैंने क्या फोन? मैंने क्या? तो तेरे हाथ में तो था, तेरे मुंह में जुबान नहीं थी। तू दिमाग खराब कर रहा है ऊपर से।
1: मैं तो पूछा वो तो, तू बोल कैसे रहा भाई?
2: भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने ऐसी किसी का नंबर मिला दिया, आपका लग गया, मैं आपका मुर्गा बना रहा था, थोड़ी सी मजाक करी और वो अच्छी खासी।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Chalk and Duster,
2: यादों को चिट्ठी।
1: कभी तो तुम क्लासरूम चमकाया करते थे, तो कभी तुम टीचर का मूड ही चमका दिया करते थे। कहाँ चले गए यार वो दिन जब काले ब्लैकबोर्ड पर तुम्हारा जादू चला करता था। जब चौक ब्लैकबोर्ड से मिला करती थी ना, तो एक अलग ही म्यूजिक बना करता था। और जब डस्टर चौक का लिखा हुआ मिटारा होता था तो सुर बदल जाया करते थे, लेकिन म्यूजिक जरूर हुआ करता था दोनों की उस लैंग्वेज में। वो कोई सिंपल आवाज नहीं थी, बल्कि हमारी पढ़ाई की बैकग्राउंड म्यूजिक थी बॉस। हर मंडे को हमारी क्लास में चौक का एक नया डब्बा आया करता था नए लुक के साथ, और सैटरडे तक वो थक हार के डब्बा खाली हो जाया करता था। और डस्टर भाई साहब, तुम तो पूरे हफ्ते धूल में लतपत होकर ब्लैकबोर्ड को ही चमकाते रहते थे, जैसे कोई दोस्त हो जो हमेशा साथ निभाए चले जा रहा है, चाहे सिचुएशन कितनी भी धूल भरी क्यों ना हो। याद है जब टीचर्स गुस्से में आते थे और चौक इतनी जोर से बोर्ड पर मारते थे कि टक की आवाज क्लास की आखिरी बेंच तक सुनाई देती थी, और डस्टर का उड़ता हुआ कमबैक सीधे खिड़की के पास बैठे लड़कों के ऊपर। हालांकि फिर हम मासूमों को पता लगा कि यार इससे तो चोट भी लग सकती है, ये तो गलत है। बट भाई जब क्लास में तुम्हारा स्टॉक खत्म हो जाया करता था ना मिड वीक के अंदर ही, तो क्लास मॉनिटर को भेजा जाता था और वो एक नया डब्बा लाने के लिए न जाने कहाँ जाया करता था। फिर मैम उस डब्बे को क्लास की अलमारी में सेफली रख दिया करती थी। तुम्हें पता है, आज तक मुझे नहीं पता है कि क्लास मॉनिटर को तुम्हारे डब्बे के लिए कहाँ जाना पड़ता था, क्योंकि मैं तो कभी क्लास मॉनिटर बनी ही नहीं। कभी तुम पर हम अपने ख्वाब लिखा करते थे, अपनी ड्राइंग्स बनाया करते थे, लोगों को चढ़ाया करते थे, टीचर्स के कार्टून्स बनाया करते थे, और आजकल स्मार्ट बोर्ड पे उंगलियां चलती है बॉस। आज सब कुछ डिजिटल हो गया है, स्मार्ट बोर्ड, मार्कर, प्रोजेक्टर, ये सारी चीजें आ गई हैं दुनिया में। पर सच बताओ, वो मजा कहाँ यार जो तुम्हारे साथ था। चौक के पाउडर से भरे हुए हाथ और डस्टर से निकली धूल में लिपटा हुआ वो ज्ञान आज भी दिल को सुकून देता है। लेकिन अब तुम ना हमारी जोड़ी के एग्जाम्पल्स में काफी काम और याद आते हो, क्योंकि अब हम तुम्हारी मिसाल दिया करते फॉर अ हिट जोड़ी। जब किसी जोड़ी की केमिस्ट्री की बात करनी हो ना, तो जुबान पर आता है बिल्कुल चौक और डस्टर की जोड़ी है बॉस। देखा तुम्हारा इम्पैक्ट हम पर कितना था, इतना कि चौक तुम हमारे लिए सिर्फ धूल नहीं थी, और डस्टर तुम सिर्फ किए कराए पर फिरने वाले डस्टर नहीं थे। तुम्हारा रिश्ता उन स्कूल डेज से ही हमसे काफी गहरा था, है और हमेशा रहेगा। तुम्हारी पुरानी स्टूडेंट जो आज भी अगर कहीं किसी क्लासरूम में चली जाती है और ब्लैकबोर्ड देख लेती है ना, तो मुस्कुरा देती है। तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause it's hot.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: उदित नारायण की आवाज में रंगीला मूवी से दिस गाना इज कैसेट के साइड बी का दूसरा गाना.
2: मिर्ची 90s कैसेट.
1: ये गाना कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन है प्यार की मोहब्बत की बात लेकिन इन अ टपोरी फॉर्मेट. एंड ऑफ कोर्स इस गाने में जो पिक्चराइजेशन है उसने टपोरी फॉर्मेट को और ज्यादा हाईलाइट कर दिया है. बट ये जो गाना है ना इसका कोई जवाब नहीं है क्योंकि यहाँ ये पूछा जा रहा है कि क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है कोई तो बता दे इसका हल. ओ मेरे भाई इसका कोई हल नहीं है. मोहब्बत चीज ही ऐसी है कि परत दर परत आपको हल जो है वो अपने आप या तो मिल जाएंगे या हो सकता है कि आप हमेशा ही कंफ्यूज रहे इस चीज को लेकर. एंड दिस गाना इज अबाउट द कश्मकश जो एक बंदे के दिल में होती है. बंदा सोच रहा है कि यार रोज हम यही सोच रहा होता है कि आज हमको अगर वो कहीं मिल जाए ना तो ऐसा बोलेगा साला वैसा बोलेगा खुल्लम खुल्ला उसपे दिल का राज हम खोलेगा. लेकिन टपोरी फॉर्मेट में आगे की जो बात कही गई है ना वो टपोरी तो है लेकिन खूबसूरत बड़ी है कि वो सामने चमकती है सांस ही अटकती है और ये जुबान जाती है फिसल. तो क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल हाय कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई. ये यूजुअली वो सवाल है जो एक लड़का अपने दोस्तों से पूछ रहा होता है कि कैसे बोलूं यार उसको कैसे अपने प्यार का इजहार करूं कैसे अपनी रातों की जो उड़ी हुई नींद है करार है उसको मैं काबू में कर पाऊं. नहीं कर सकते स्पेशली तब जब प्यार एक तरफा हो. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चेक करना कि प्यार एक तरफा है या दो तरफा. अच्छा चलो प्यार नहीं तो पसंद ही सही उसको प्यार में तब्दील कर सकते हैं लेकिन पसंद का पी भी होना चाहिए भले ही प्यार का पी ना हो. क्योंकि जिंदगी की बात करें ना बाबू मुशाय तो ये 90s की कोई फिल्म नहीं है कि हीरो को लड़की पसंद आई तो जाके बोल दिया कि आई लव यू और लड़की हाँ बोल देगी. ऐसा सिर्फ तब की फिल्मों में हुआ करता था. लड़की की भी हामी जरूरी है बॉस क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब लड़कों ने ये वाला फॉर्मेट फॉलो किया है जब प्यार एक तरफा है और आपने नहीं पूछा है कि क्या मैं तुम्हें भी पसंद हूँ तो लड़कों ने मुंह की खाई है और फिर उनके दिल ने दी दुहाई है. तो इस सारे प्रोसीजर से बचने के लिए सबसे पहले ये कन्फर्म करो कि पर से प्यार ना सही लेकिन पर से पसंद है कि नहीं. चलो जी अब जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती भी जाती हूँ और आपसे कहती हूँ हमें रही प्यार के लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 'cause इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
2: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
1: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: महमूद, राघव, रुआ के की आवाज में ये गाना आपके कानों में माशूक की तरह किसने पहुंचाया? और देखिए, जब हम और आप मिल जाते हैं तो दुनिया जले तो जले, लेकिन हमें मजे ही मजे करने हैं। फिलहाल शाम के 4:05 का टाइम हो गया।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: और हमारा टाइम अच्छा होता है तो हमें अच्छा खाना मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों को खाना ऐसा मिलता है कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और फिर क्या रेस्टोरेंट पे कार्रवाई, और ऐसी कार्रवाई की है हमारे कतर की मिनिस्ट्री ने। यस, हम आपको बता दें कि पिछले दिनों एक फूड आउटलेट की कंप्लेन हुई और वहां पर रेस्टोरेंट में फूड पॉइजनिंग के चलते जब ये मामला सामने आया तो मिनिस्टर पब्लिक हेल्थ ने क्लैरिफाई किया कि ये काफी ज्यादा रिपोर्ट वहां से आ रही है और प्रिकॉशनरी मेजर न लेने के कारण 15 दिनों के लिए लाइसेंस को अभी सस्पेक्ट कर एक तरह से रेस्टोरेंट पर ताला लगाया गया है। एंड यही होता है जब आप फूड पॉइजनिंग केस में फंसते हैं, या तो आपका सच में पेट खराब है, आप रेस्टोरेंट के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, या फिर हो सकता है वहां पर कोई लापरवाही बरती जा रही हो। लेकिन इसीलिए कहते हैं भैया, अपनी अकल लगाओ, कम पैसे में ज्यादा अच्छा खाने के चक्कर में भी कभी कभी इंसान यहाँ फंस जाता है। फिलहाल आ गया मस्त मोर गौरव बातों की दुकान लेकर। भाई, वर्ल्ड कप में क्या चल रहा है, हमारे कतर के कोने कोने में क्या चल रहा है, कहाँ आप वर्ल्ड कप के मैचेस जॉइंट स्क्रीन पर देख पाओगे, ये सब कुछ यही पता लगेगा। कान टिका लो, वॉल्यूम बढ़ा लो। आ गया मस्त मोर गौरव लेकर शाम शानदार में ढेर सारी बातें मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burka, burka. La virpa la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
2: स्पीकिंग।
3: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
2: अच्छा।
3: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
2: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था, तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया। और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
3: अरे ग्रेट, तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
2: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
3: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
2: आ सकती हूँ मैं उसमें?
3: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियां आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक।
2: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
3: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं या हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
2: आपका क्या है?
3: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
2: ठीक है।
3: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
2: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
3: सिर तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुर के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही है।
2: नहीं, मना क्या कर दे, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
3: हेलो,
2: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शॉप।
3: तानिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, इसमें मेरी क्या गलती है?
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

0: कल देर रात क्या कर रहे हो? कल रात 12 बजे के बाद कोई प्लान तो नहीं है? अगर नहीं है तो एक प्लान हम बना सकते हैं यार, अलनाबी को सपोर्ट करने की बात है, हम अपने कतर को चीयर करने जाएंगे कनाडा वाले मैच के अगेंस्ट।
1: #974974 the most trending local news of the day।
0: यस, हम आपको बता दें 3-2-1 कतर ओलंपिक स्पोर्ट्स म्यूजियम हम सबको बुला रहा है लेवल 7 पर, जहां पर आप बिल्डिंग को एक्सेस कर पहुंच सकते हैं उस फैन जोन में जो हमारे लिए और आपके लिए खोला जा रहा है। यस, हम आपको बता दें कतर जिन्होंने प्रॉमिसिंग स्टार्ट करी है, स्विट्जरलैंड के खिलाफ एक मैच ड्रॉ किया और पहली बार फीफा के पॉइंट्स टेबल पर हम आए। अब दूसरा मैच हमारा होना है होस्ट कंट्री कनाडा से, और ये मैच वैसे तो फ्राइडे 1 AM यानी कि कल देर रात 12 बजे के बाद जो 1 बजे का उसमें शुरू हो जाएगा। सो मुझे लगता है एक परफेक्ट डे थर्सडे की देर रात 12 बजे के बाद जब फ्राइडे लगेगा रात 1 बजे हमें 3-2-1 कतर ओलंपिक स्पोर्ट्स म्यूजियम अपने यहां बुला कर कह रहा है आओ हमारे साथ मैच देखो और टीम स्पिरिट एक साथ बनाकर हमारे कतर को चीयर कर हम क्या पता कल इतिहास रच दें। सो आई एम वेरी श्योर सबका प्लान अपना अपना बना होगा, लेकिन देर रात 1 बजे का प्लान जल्दी नहीं बनाते, इसलिए मौका है हमारे आपके पास वही लाइफ को जीने का, उसी पलों को जीने का जो हमने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान जी थी। तो क्या आप उन यादों को ताजा करना चाहते हैं? तो दिस इज वन प्लेस, 3-2-1 कतर ओलंपिक स्पोर्ट्स म्यूजियम, कल देर रात 12:30 तक पहुंचिए और उसके बाद 1 बजे जब मैच शुरू होगा फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग तो हम अपनी कतर को चीयर करेंगे एंड इस बार इतिहास रचेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है हम होस्ट कंट्री कनाडा को बीट कर देंगे एंड आगे बढ़ेंगे राउंड ऑफ 32 में। सपने हमेशा देखने चाहिए क्योंकि वही सपने सच होते हैं जिनको आपने देखा है, बस मेहनत करनी होती है और हमारी अलन्ना भी मेहनत कर रही है। ऑल द बेस्ट टू टीम कतर, मिर्ची सवार।

0: कलंदर मस्त कलंदर और दमादम मस्त कलंदर आपके साथ है वो शख्स जिसका नाम है
1: मस्त मौला गौरव।
0: यूं तो बहुत कुछ है हमारे कतर में आपके पास इस वीकेंड करने के लिए, लेकिन एक पूरी लिस्ट लेकर आती है ईशा, जहां वो आपको बताती है कि वीकेंड पर क्या क्या प्लान कर सकते हो। लेकिन उन सबके बीच अगर कुछ बड़ा आप मिस कर जाते हैं तो मैं भी हूं ना, ध्यान दिलवा रहा हूं। जैसे कि अगर बात करें तो वर्कशॉप चल रही है वर्ल्ड कप 2026 को लेकर, बच्चों के लिए एक प्रॉपर वर्कशॉप है जो 19th, 20th, 26th, 27th of June को हमारे कतर में हो रही है। शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच आप बच्चों को लेकर आइए 3-2-1 कतर ओलंपिक स्पोर्ट्स म्यूजियम में इस वीकेंड करने के लिए। लेकिन एक पूरी लिस्ट लेकर आती है ईशा, जहां वो आपको बताती है कि वीकेंड पर क्या क्या प्लान कर सकते हो। लेकिन उन सबके बीच अगर कुछ बड़ा आप मिस कर जाते हैं तो मैं भी हूं ना, ध्यान दिलवा रहा हूं। जैसे कि अगर बात करें तो वर्कशॉप चल रही है वर्ल्ड कप 2026 को लेकर, बच्चों के लिए एक प्रॉपर वर्कशॉप है जो 19th 20th 26th 27th of June को हमारे कथन में हो रही है। शाम 4 बजे

फुटबॉल अपनी ट्रॉफी डिजाइन कर पाएंगे जो वो अब तक टीवी में देखते आए हैं। यार बच्चों को ना आप रियल वर्ल्ड से जोड़ना शुरू कर दीजिए। कब तक टीवी की दुनिया से जोड़ के मोबाइल देख के अपना टाइम पास और बच्चे का टाइम पास कराते रहेंगे। वो टाइम है जब बच्चों को 7 इंच के स्क्रीन से बाहर निकालिए और ये जो खूबसूरत खूबसूरत इमारतें बनी है जहां पर इस तरह की वर्कशॉप चल रही है वहां तक लेकर आइए, क्योंकि एक बार उन्होंने ये समझ लिया कि असली दुनिया स्क्रीन के बाहर है फिर तो आपकी भी लाइफ सेट और बच्चा भी आगे चलकर बढ़ेगा। जबरदस्त आर्टिस्ट 89.6 जीवन पर एक और आर्टिस्ट आपके साथ है, नाम है मस्मलो गौरव मिर्ची। इट्स हॉट, चलो भैया मदारी शुरू कर दो जरा गाना।

0: 24 घंटे ही रहेंगी।
1: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहाँ के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
2: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी, टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
3: मिर्ची इट्स हॉट। शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
4: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ मी लव इज डेथ।
3: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
5: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी।
3: Catch Officer Brown, tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown, streaming on Hindi Z5 from 12th June.
6: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
7: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
8: बहुत कुछ होगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: जुबनी क्या गाना गाया मिक्का पाजी।
1: मस्त मौला गौरव
0: आपके साथ है और इतना ही कहना चाहता हूँ, एक शानदार गाना खत्म हुआ लेकिन एक जानदार मौसम जो है वो अभी भी जान लेने की कोशिश कर रहा है। गजब की एकदम आंधी तूफान धूप।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट की बात करें तो यस, इस वक्त देश में यानी कि भाई कतर में मौसम ने जबरदस्त माहौल बनाया हुआ है। हालांकि विंडी उतना है लेकिन उसकी वजह से टेम्परेचर जरूर नीचे गया है। अगर बात करें दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर आज जहां पहुंचा 41 डिग्री सेल्सियस, वहीं मिनिमम अराउंड 29 आएगा। और ये बता रहा है कि ये चलती हवाओं ने थोड़ी गर्मी के रुख को तो कम किया है जो कि 24 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चल रही है। सुबह शाम मौसम ठीक ही ठाक लग रहा है। अगर आप वॉक करते हैं तो तपन है लेकिन ये वाली तपन नहीं कि आप एकदम बर्दाश्त ना कर पाएं। फिलहाल तो मस्मोलो गौर बस इतना ही कहेगा, पानी पीते रहिए, ज्यादा फैंटम बनने की कोशिश ना कीजिए, बॉडी को रखिए हाइड्रेट एंड एंटरटेनमेंट लिए हम आपका एंटरटेनमेंट पूरा कर ही दे रहे हैं। मिर्ची थॉट
3: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
3: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
2: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: यस, इट्स मिर्ची हेल्पलाइन, टेल मी।
1: यार रोज सुबह लैपटॉप लेके कुछ लिखने के लिए बैठता हूँ, नोटपैड भी खोलता हूँ, पर लिख ही नहीं पाता, क्या करूँ?
0: लिख नहीं पाता हूँ, क्या करूँ? सिंपल मैन, नया कीबोर्ड ले ले।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: Sham Shandar with Mirchi Gaurav. Only on 89.6 Mirchi 1. Qatar mein Bollywood ka Mirchi wala tadka. It's hot. Sham Shandar brought to you by Kim's Health Medical Center. Mirchi. Fresh maal.
1: मस्ती मैडनेस और जंगल के एडवेंचर के वाइब्स के साथ सुनो वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने। और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 89.6 मिर्ची 1 पर आपके साथ। यहाँ कौन आपका वेलकम कर रहा है इस दूसरे घंटे में?
2: मस्त मौला गौरव
1: सिर्फ वेलकम नहीं कर रहा हूँ, आपको बुला रहा हूँ मैं उस गेम को खेलने के लिए जो शाम 5 बजे के बाद हम खेलते हैं। उसका नाम है पहचान कौन। फिलहाल घड़ी का टाइम 5:05।
3: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: हाँ जी, और अब आ गई है बारी खेलने की
4: पहचान कौन।
1: और पहचान कौन में मस्त मौला गौरव आपको एक आवाज सुनाएगा, आपको पकड़नी है कि ये आवाज है किसकी।
5: सीरियस हो गया, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं कपिल
6: जी।
5: उसने कहा कि बहुत सीरियस हो गया, तुम्हें पैर काटना पड़ेगा। मैंने कहा अरे ये तो मतलब मैं यहाँ एक्शन करने आया, आप बोल रहे हो पैर काट लो। मुंबई में मैंने फोन किया अपने डॉक्टर को,
1: मतलब मैं एक्शन करने आया और आप कह रहे हो पैर काट लो। मजाक नहीं कर रहा भाई, उसने कपिल शर्मा के शो पे ये बात कही। एक बार फिर से सुनिए, बताइए कौन सा एक्टर है ये।
5: सीरियस हो गया, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं कपिल
6: जी।
5: उसने कहा कि बहुत सीरियस हो गया, तुम्हें पैर काटना पड़ेगा। मैंने कहा अरे ये तो मतलब मैं यहाँ एक्शन करने आया, आप बोल रहे हो पैर काट लो। मुंबई में मैंने फोन किया अपने डॉक्टर को, डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पे ड्रेन पाइप लगा दो।
1: अब आप समझ रहे हैं कौन है, कौन सा एक्टर है जिसकी आवाज मैंने सुनाई है। बहुत सारे लोगों का जवाब आना शुरू हो गया अभी से। 5000018965000189650001896 पर बताइए किसकी आवाज है।
5: मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं कपिल
6: जी।
5: उसने कहा कि बहुत सीरियस हो गया, तुम्हें पैर काटना पड़ेगा। मैंने कहा अरे ये तो मतलब मैं यहाँ एक्शन करने आया, आप बोल रहे हो पैर काट लो।
1: 5000018965 पर मस्त मौला गौरव आपके इंतजार में। वॉइस नोट पर अपना जवाब भेजिए। और यहाँ कॉल्स आ रहे हैं, नहीं वॉइस नोट करिए मिर्ची के व्हाट्सएप नंबर 5000018965 पर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मिर्ची थॉट।

0: Mirci.
1: Iskava la puskava na sakava na. Burga, burga, burga. La vidva la burga. Mirci, burga.
2: हेलो
3: बेटा, आप घर आ जाओ, मामा परेशान है, खाना खा ले, ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आ जा।
2: हेलो, कौन बोल रहे हैं
3: बेटा? आ जा रे, आ जा, आ जा, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
2: हेलो बेटा। अरे अंकल, आप ये तो बताइए, बोल कौन रहे हो?
3: देख, अपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते बेटा, एक तो बुढ़ापे में तो ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते, और तू चला गया। अंकल, मैं
2: आपका बेटा नहीं हूँ।
3: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
2: अरे अंकल, ये तो बताइए, आप बोल कहाँ से रहे हो
3: बेटे? ऐसे नाराज होते हैं तो जानते।
2: अंकल, मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है
3: बेटे। नहीं, ऐसे ये नाराजगी होती है तो ऐसे घर छोड़ कर जाते हैं।
2: माता जी से बात करा दीजिए
3: बेटे। आजा आजा बेटे।
2: अंकल, माता कहाँ है?
3: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
2: छाता नहीं अंकल, माता। आप अपने कान के बात
3: बेटे, कोई गलती हो या देख तो बेटे माफ कर दे, ऐसे नहीं जाते।
2: अंकल, मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
3: अरे बात, मेरे बात
4: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
3: हेलो, हेलो
2: अंकल, आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
3: वैसे घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
2: अरे अंकल, मेरे बात को बेटा नहीं हूं मैं।
3: आप तू आ जाएगा तो आज
2: आपने नंबर क्या मिलाया मेरे बेटे का? सुनाई दे
3: बेटा, तेज बोल भाई जी, जो चाहिए दे देंगे। आ जा बेटे।
2: अंकल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
3: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे।
2: क्यों?
4: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो भाई?
2: क्या भाई, मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया चीख चीख के।
4: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई, धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
2: बोलना जरूरी है?
4: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
3: आवाज नहीं आई, तेज बोल।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
7: लव इज माय बिगेस्ट फियर, बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ।
6: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
8: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी थी।
6: Catch Officer Brown. Officer Brown. Tearing through the city of Joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Zee5 from 12th June.

0: पावर्ड बाय आईपे, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस, आईपे वॉलेट का भरोसा। डाउनलोड कीजिए आज ही आईपे, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर। Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics, clear vision, stylish fashion, all at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट, चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज, बजट में चाहिए टेस्टी डीज तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में। स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त।
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, शॉपिंग, डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल। अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन।
2: Hygiene partner, hygiene from clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी, हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइन, डैजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी। शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार। स्काई ज्वेलरी, डिजाइन फॉर जनरेशंस।
5: रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलाडना मिल्क लबान योगर्ट, एक्सपीरियंस द फ्रेश क्रीमी टेस्ट दैट कतार लव्स, रिफ्रेशिंग एवरी मोमेंट विद एवरी सिप एंड स्पून।
0: Fragrance partner Faridi Perfumes Gallery, make every moment unforgettable with premium Arabic and French fragrances crafted for every style. Visit our Al Saad branch, Faridi Perfumes Gallery, luxury you can wear. Visual media partner Rehab Media.
6: Summer camp partner Absolute Sports. School's out, game on. Join Absolute Sports Summer Camp for ages 3 to 15. Fun, sports and new friends every day. Transportation available and early bird discounts on now. Register today at Absolute Sports.
7: Call 5501-7739.

0: 89.6 मिशिगन पर आपके साथ चल रहा है मेरा शो शाम शानदार। नाम है
1: मस्त मौला गौरव।
0: भैया इस घंटे हम खेलते हैं वो जिसे कहते हैं
2: पहचान कौन।
0: और पहचान कौन में एक आवाज आपके कानों में जाती है, आपको पहचानना होता है कि ये आवाज किसकी है। और आज की कुछ आवाज यूं है।
3: सीरियस हो गया, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं कपिल
4: जी।
3: उसने कहा कि बहुत सीरियस हो गया, तुम्हें पैर काटना पड़ेगा। मैंने कहा अरे ये तो मतलब मैं यहाँ एक्शन करने आप बोल रहे हो पैर काट लो। मुंबई में मैंने फोन किया अपने डॉक्टर को, डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पे ड्रेन पाइप लगा दो
0: और बस। उसके बाद आपको बताना था कि आवाज किसकी है। देखिए जवाब आने शुरू हो गए हैं।
5: गुड इवनिंग गौरव, हाउ आर यू? यूसुफ हियर, दिस इज जॉन अब्राहम। ओके थैंक यू, बाय बाय।
0: थैंक यू थैंक यू।
6: हे मस्त मौला गौरव, दिस इज योगेश एंड द आंसर इज जॉन अब्राहम।
0: ओके
7: हाय गौरव, हाउ आर यू?
0: आई एम गुड, आई एम गुड।
7: द वॉइस इज फॉर जॉन अब्राहम।
0: John Abraham, okay.
8: Hi, good evening, Gaurav.
0: Good evening, good evening.
8: This is Abhilash. The voice is of Ranbir
0: Kapoor.
8: Gaurav, maybe this is Jackie Shroff.
0: Jackie Shroff? No, no, no, no, no. Not Ranbir Kapoor, not Jackie Shroff. Jitne logon ne John Abraham bola, ekdam sahi jawab hai. Well, बहुत सारे लोगों ने ये जवाब आज मुझे रिकॉर्ड करके नहीं बल्कि भेजे हैं। दिनेश कुमार साहब ने कहा है कि पहचान कौन का आंसर जॉन अब्राहम। इसके अलावा एक और भाई साहब हैं जिन्होंने जॉन अब्राहम लिखा है, नाम है इनका नदीम अहमद अजमी। इसके अलावा एक और जॉन अब्राहम, दिस इज नवीन। यस नवीन, आप भी सही है, जॉन अब्राहम नरेश। अगर हम बात करें तो कार्तिक आर्यन साजिद रिदा ने लिखा है, गलत जवाब, कार्तिक आर्यन नहीं है, ये जॉन अब्राहम है। दिस इज मोहम्मद अख्तर, आंसर इज जॉन अब्राहम। इसके अलावा वसीम ने कहा है जॉन अब्राहम एक और लिख कर आया है। एंड लास्ट में नंबर सेज शाहिब अंसारी। यस शाहिब अंसारी साहब, बिल्कुल सही जवाब है, इट्स जॉन अब्राहम। एंड यही सही जवाब था आज के पहचान कौन का। अब अगला गाना पहचान कौन आनंद राज आनंद की आवाज में, इतना खूबसूरत रिक्रिएशन है दिल खुश हो जाएगा। हम बस इतना ही कहेंगे कि इस गाने को हम सब ने गाया है, अब प्यार हुआ, दिल टूटा, फिर प्यार हुआ, सब में ये गाना एकदम कॉमन रहता है।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी, टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: यार अपने छठे वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक। यस, आज सुबह सवेरे मैच था अर्जेंटीना वर्सेस अल्जीरिया के बीच एंड फाइनली 17th मिनट, 68th मिनट, 76th मिनट में मेसी ने स्कोर किए अपने ये हैट्रिक की गोल की कंप्लीट की एंड 16 गोल हो गए अब उनके फीफा वर्ल्ड कप करियर में, जो एक इतिहास के बराबर। यस, बता दें ही इज इक्वलिंग द रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग मोस्ट गोल्स इन फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री। और ये इससे पहले मिरोस्लाव क्लोसे के पास था, जर्मनी के क्लोसे के पास, अब तक का सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड है। एंड अगर अब मेसी इसके आगे एक भी गोल लगाते हैं तो वो वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हो जाएंगे। अब इतने के बाद जब मेसी फैंस कहते कि मेसी ही रियल गोट है, तो रोनाल्डो एम्बापे इनके फैंस कहते नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। पर मैं कहूँ मेसी को रियल थ्रेट आज नहीं तो कल एम्बापे से ही है भैया। आज सुबह सुबह लड़के ने भी दो गोल जमा दिए। फिलहाल इतना ही कहना चाहते हैं, एक तरफ हम उस ढलती हिस्ट्री को देख रहे हैं मेसी के रूप में, आखिरी वर्ल्ड कप कह सकते हैं जहां पर आज उन्होंने हैट्रिक लगाई है, वहीं दूसरी तरफ एम्बापे भी कमाल करते जा रहे हैं हर वर्ल्ड कप के साथ, और खूंखार और एग्रेसिव। क्या होगा क्या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल क्लोसे के रिकॉर्ड के बहुत पास खड़े हैं मेसी, और क्या पता अगले मैच में अपना वही रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास में सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले खिलाड़ी बन जाए। वेल मेसी फैंस, आज तो आपके लिए ट्रीट रही है 89.6 मिर्ची वन। इट्स हॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: Nimrat Kaur, I loved you in Lunchbox. अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
2: ओह, अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
1: निमरत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हाय हाय क्या गाना है, नैनों ने बांधी है ऐसी डोर। सच में यार क्या गाना गाए हैं आप, दिल खुश कर दिया है भाई।
1: मस्त मौला गौरव।
0: कुछ लोग होते हैं जो गाने भले ही कम गाए लेकिन जो गाते हिट हो जाते हैं। यासिर देसाई इज वन दैट नेम, क्योंकि मेरा ये मानना है वन ऑफ दैट नेम, क्योंकि भाई की शानदार आवाज है और भाई जब भी गाना गाता है बहुत ही शानदार गाता है। लेकिन एक चीज जिसका इंतजार मैं इस वक्त कर रहा हूँ वो है कैसे 17 तारीख 30 तारीख में बदले और मेरी सैलरी आ जाए यार। क्योंकि मुझे लगता है यार जब पैसे हाई रेट्स पर होते हैं तब अपनी जेब में कड़की होती है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाली भारतीय मुद्रा 25.92 रुपए चल रहे हैं, 25.92 INR। वही वन कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज 91.63, 91.63 रुपए। अगर हम पाकिस्तान रुपीज की बात करें जनाब, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.69 पाकिस्तान रुपीज अगेंस्ट वन कतरी रियाल। तपाई को नेपाली रुपीज का रेट से दाजो एक कतरी रियाल के बदले 41.37 का भाल रेट है भाई जी। 41.37 को नेपाली रुपीज का रेट छो दाई, अगर घर भेजना तो राइट टाइम छो। अगर इसके बाद हम बात करें बंधु बांग्लादेशी ढाका का दादा, एकटा कतरी रियाल के बदले 33.78 तो 33.78। एंड ये रेट्स कहां मिलते हैं? आई पे एक्सचेंज में। यस, उसके लिए सिर्फ फोन पे ऐप डाउनलोड कर दो, लाइन वाइन में लगने नहीं है, फटाफट से घर पैसे भेज दो मिर्ची।

0: बंजारे की आवाज में बैरन गाना सुनाया किसने? मिर्ची स्टूडियो की क्लॉक का टाइम 6:03 से 6:04 की तरफ बढ़ता हुआ। यस,
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वैसे यार मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे ना यूं तो किसी भी स्टेट में जाता हूं खाने का बहुत मन करता है, तो बहुत सारे वहां के लोकल डिशेस ट्राई करता हूं, लेकिन जब मैं पहली बार लाइफ में कोलकाता पहुंचा था तो मैंने वहां खाई थी लुच्ची भाजी, यानी कि पूरी जो बिल्कुल भटूरे टाइप की होती है लेकिन भटूरा भी नहीं होता है ना, पूरी तरह से पूरी होती है, एंड एक शानदार पीस ऑफ यू नो टेस्ट जो है वो मुझे मिला था वहां। फिर मैंने ट्रैम देखी एंड कोलकाता के लोगों के अंदर एक जो मस्ती थी ना उसको देखकर मैंने कहा ये तो एकदम मेरे शहर जैसा लगता है, यहां कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं बेगाना हूं। लेकिन इस वक्त जो कोलकाता में चल रहा है वो सुनकर दिल दहल जा रहा है, क्योंकि एक ऐसी क्राइम थ्रिलर इस वक्त कोलकाता के बैकग्राउंड पे बनी है, Z5 पर आप इसे देख पाएंगे। नाम है क्राइम थ्रिलर का ब्राउन। यस, इसमें करीना कपूर स्क्रीन पर एक बेहद दमदार नो फिल्टर कॉप बनी है, और उनके इस रफ एंड टफ लुक के साथ उनका ये कमबैक उतना ही दमदार है जितनी ये सीरीज ब्राउन। वेल, बस इतना ही कहना चाहता हूं, इसके सातों एपिसोड्स अब आप हिंदी में स्ट्रीम कर देख पा रहे हो। यस, Z5 पर जाइए, गो वॉच इट नाउ, एंड अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है Z5 का तो जाइए, क्योंकि ये अब तक की वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो मुझे देखने को मिली है। इतना ही कह सकता हूं, इस साल चौंका दिया करिश्मा कपूर ने अपने शानदार कमबैक से, एंड कोलकाता जिसे सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं वहां अचानक मर्डर्स पे मर्डर्स हो रहे हैं एंड सबूत पे सबूत जो है वो मिल ही नहीं रहा, लेकिन फाइनली ऑफिसर ब्राउन दैट इज करिश्मा कपूर वो आती हैं और चीजों को धीरे धीरे सुलझाना शुरू करती हैं। अब अगले मर्डर से पहले क्या वो ये रोक पाएंगी, इसके लिए आपको Z5 पर जाकर स्ट्रीम करना होगा ये ब्राउन सीरीज। लेकिन फिलहाल के लिए मैं स्मॉल गौर ने याद दिलाया, इस वीकेंड आपका ये काम भी हो सकता है पूरा, जहां आप बैठकर बिंज वॉच कर लो, एंड क्या होगी गौरव यार सही चीज सजेस्ट कर दी, मिर्ची थॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello. Hello.
2: Hello, Mr. Anil.
1: हाँ जी.
2: Mr. Anil, तीनों आ गए हैं.
1: तीनों आ गए?
2: सर, मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की. तो सर, तीन है हमारे पास. आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं.
1: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
2: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर.
1: जी, फिर?
2: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग. एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद. एक सेकंड रुकिए.
1: हेलो.
2: हाँ सर, एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद. हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है.
1: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है. कोई आप गलत मिला है.
2: गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है. बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी.
1: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई.
2: तो अनिल जी, आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भर गया यहाँ पे आके.
1: कौन बोल रहे हैं भाई?
2: आप कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं. तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं.
1: क्या तरीका है?
2: क्या तरीका
1: है आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो?
2: अनिल बंसल आप ही हैं.
1: अनिल बंसल मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है.
2: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं. अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
1: आप पहले कंफर्म तो करो कम से कम.
2: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार आप. एक बच्चा, तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार.
1: बात करो, एक तरीका है बात करने का
2: यार. तरीका आप.
3: ओ बच्चा चुप हो जाओ, वो गुस्सा आ गया उनको.
2: यार अनिल जी, कमाल कर दिया आपने.
1: मैं काम कर रहा हूँ बैठा हुआ, आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ
2: सर. मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने सारी बातें कही थी. एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने, साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है. आपको जो पसंद आता
1: है कितने भी महीने का हो, तुम ले लो फिर अपने पास. तुम अडॉप्ट कर लो, मुझे नहीं चाहिए.
2: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार? आप अपनी बात करो यार.
1: तुमने अगर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा बच्चा, समझ गया?
3: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है. अनिल जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा. आपका मुर्गा बना दिया.
1: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: 89.6 मिर्ची 1 पर आपके साथ वो इंसान है जिसको खाने पीने का बहुत शौक है, यानी कि नाम ही है हमारा मस्त मौला गौरव। और कोई भी खाना अगर अच्छा हो ना तो इंसान को उसमें तड़का लगाना पड़ता है, और एक बार तड़का लगाकर आपने वो खाना शुरू किया तो फिर आपको चस्का लग जाता है बार बार बार बार वही खाने का। और ऐसा ही चस्का लगा रहे हैं चस्का रेस्टोरेंट से, मिस्टर ग्लेन हमारे साथ है। ग्लेन जी बहुत बहुत स्वागत है मिर्ची स्टूडियोज में।
1: थैंक यू गौरव, आप कैसे हो आज?
0: बहुत बढ़िया। और ग्लेन, क्योंकि हम आपके रेस्टोरेंट पिछले दिनों आए थे चस्का रेस्टोरेंट में, हमारी मिर्ची टीम का आपने जो इस्तकबाल स्वागत किया था शानदार था, तो हमने कहा शानदार स्वागत का एक दमदार जवाब भी होना चाहिए, तो आज आपको मिर्ची स्टूडियोज बुलाया। कैसा लग रहा है?
1: बहुत बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट टाइम मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ
0: जी।
1: और ये पूछना चाहता कि आप जो आए थे हमारे रेस्टोरेंट में, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
0: अरे शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, क्योंकि हमने वहाँ पर चाइनीज खाई, नॉर्थ इंडियन खाया, और कुछ अलग से जो स्पेशल मुंबई के आपने तड़के लगाए थे वो मराठी वाली फीलिंग भी आई। सो इतना सब कुछ कैसे लेकर आए, क्या करते थे और कहाँ से आए, इसकी ही बातें आज थोड़ी सी करेंगे आपके साथ। तैयार हैं आप?
1: बिल्कुल तैयार।
0: चलिए जी, ग्लेन जी से और बातें करेंगे। एक ऐसा रेस्टोरेंट जो कि एसडान ओएसिस में आपको मिलता है चस्का, जहां आपके चाइनीज की क्रेविंग को वो शांत करते हैं, आपसे कहते हैं नॉर्थ इंडियन खाना, पराठे खाने, हमारे यहाँ जो गोलगप्पे खाने, हमारे यहाँ जाओ, आपको कुछ भी खाना है जो टैंगी टेस्टी और बड़ा चटपटा हो तो चस्का उसका चस्का लगाने को तैयार रहता है। सही बात है ना?
1: जरूर जरूर।
0: एंड आज बहुत सारी बातें करेंगे एंड जानेंगे कि यहाँ पर ये सफर कैसे शुरू हुआ और कैसा चल रहा है कतर में, कैसा है ये रेस्टोरेंट बिजनेस, सब कुछ ओनली 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: आज एक ऐसे ही रेस्टोरेंट ओनर के साथ है, चस्का रेस्टोरेंट एसडान ओएसिस में है और हमारे मिर्ची मोमी अवार्ड्स के रेस्टोरेंट पार्टनर भी हैं। तो आज तो चस्का वालों से बात बनती है। ग्लेन खुद यहाँ पर है, फाउंडर है कह सकते हैं, चस्का रेस्टोरेंट को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन ग्लेन, आपकी शुरुआत एज अ रेस्टोरेंट ओनर ही हुई थी, मतलब आपको इस फील्ड में आना था पैशन की वजह से, या फिर डेस्टिनी थी कि नहीं यार कुछ और करते थे यहाँ आगे, क्या था आपकी शुरुआत?
1: नहीं, ये तो डेस्टिनी कहेंगे डेस्टिनी कहेंगे, क्योंकि इनिशियली तो मैं जॉब ही करता था।
0: अच्छा, जॉब करते थे, किस फील्ड में?
1: मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में था।
0: अरे यार, क्या बात है, कंस्ट्रक्शन लाइन से टोटली
1: टोटली डिफरेंट सेटअप, यू नो। तो बट ऐसा लगा कि इतने साल रहने के बाद हमारा खुद का कुछ होना चाहिए, खुद। तो मैंने सोचा, ऑब्वियसली खाने का पैशन तो मुझे है
0: जी,
1: मुझे फूड टेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है।
0: ओके,
1: तो इसलिए मैं सोचा क्यों नहीं इसी लाइन में कुछ सोचें।
0: सो वहां से फिर एक
1: इन्फॉर्मेशन लेके कैसे रेस्टोरेंट को आप ऑपरेट करोगे, उसके
0: कोई पढ़ाई नहीं की थी, कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स
1: कुछ नहीं, खाली चाहिए था कि हम मेरे लिए कुछ एक मेरा खुद का एक बिजनेस हो। तो ऑब्वियसली सबको खाने खिलाने से अच्छा और क्या हो सकता है।
0: और जब हम आपके रेस्टोरेंट में थे तो हमारे को आपके ही एक स्टाफ ने बताया कि सर म्यूजिक भी प्ले करते थे, तो वो संगीत की कहानी क्या है?
1: नहीं, इनिशियली मैं तो मुंबई से हूँ, तो वहाँ पे जब हम लोग कॉलेज में थे तो वो टाइम पे थोड़ा म्यूजिक सीखा था, थोड़ा कीबोर्ड सीखा था, थोड़ा वो टाइम पे वोकल्स भी अच्छे थे तो बैंड में भी गाना गाता था।
0: अरे तो आज छोटी एक छोटा सुर तो जरूर सुनेंगे आपसे आपसे थोड़ी देर में। लेकिन सोचिए, इंसान कंस्ट्रक्शन फील्ड में था, जॉब करता था, मुंबई से आया था, कभी उसने कोई पढ़ाई नहीं करी थी, लेकिन आज कतर में एक प्यारा सा रेस्टोरेंट खोल कर रखे हैं, जहां पर दिल से परोसा जाता है स्वाद, आपको चाइनीज, इंडियन, नॉर्थ इंडियन, वेस्ट इंडियन, कोई भी फूड आपको सब मिलेगा। एक बार जाकर जरूर देखिए चस्का रेस्टोरेंट, और आज उसी से ओनर ग्लेन हमारे साथ जुड़े, थोड़ी और बातें करेंगे 89.6 मिर्ची 1 पर। इट्स हॉट

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी, टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
6: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ मी लव इज डेथ।
5: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
7: गलती भी हमारा, जिम्मेदारी भी हमारी
5: थी। कैच ऑफिसर ब्राउन, ऑफिसर ब्राउन टियरिंग थ्रू द सिटी ऑफ जॉयस डार्केस्ट सीक्रेट्स। ब्राउन स्ट्रीमिंग ऑन हिंदी Z5 फ्रॉम 12th June।
8: अर्ज किया है
9: इरशाद, इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: दोस्ती का एक उसूल है मैडम. नो सॉरी नो थैंक यू.
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए.
3: तुम मिर्ची सुनो ना जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
4: खूब मिलेगा, मिलेगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: 89.6 मिर्च जीवन पर मैं हूं आरजे मस्पोला गौरव और मेरे साथ आज यहां मिर्ची स्टूडियोज में खास मेहमान बनकर बैठे हैं रेस्टोरेंट ओनर ऑफ चस्का यस जो कि एस्टान ओएसिस में है चाइनीज इंडियन या फिर आपको मराठी डिश खानी हो ये सब कुछ एक ही छत के नीचे चस्का रेस्टोरेंट मिलता है ग्लेन जो कि इस रेस्टोरेंट को बहुत प्यार से चलाते हैं और पिछले दिनों हम जब चस्का गए थे तो हमने देखा बॉलीवुड थीम बड़ी छाई हुई है ये बॉलीवुड थीम के पीछे मुंबई आपका मुंबई से कनेक्शन या फिर पूरे इंडिया का बॉलीवुड से कनेक्शन
1: मुझे हमेशा चाहिए था कि जब कोई लोग आए तो उनको घर जैसा फील हो सो उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो अपने घर में बैठे हैं एक घर के सेटिंग में बैठे हैं
0: तो नॉस्टैल्जिया फील दिया
1: तो दो ही चीज चलता है इंडिया में एक खाना और एक फिल्म तो इसलिए हमने वो अपने जो पोस्टर्स है उसको भी नाम हमने फिल्मी चस्का दिया हुआ है ताकि पब्लिक आए देखे और मतलब जो सेटिंग है उनको घर जैसा फील हो
0: वो एक खास बात बताऊं मैं आप उन पोस्टर्स को देखेंगे उसमें फेमस डायलॉग लिखे लेकिन फिल्मों का नाम नहीं लिखा है तो आप आपस में वहां पे क्विज भी खेल सकते हैं वेल एक शानदार सेटअप है बड़ा ही प्यारा सा कोजी सा एंड अगर हम बात करें तो इस रेस्टोरेंट में ऐसा और क्या दिया जाता है या ऐसा ऐसे और क्या करते हैं जिससे हमें घर की फीलिंग आती है
1: तो हमने इसलिए उसको जो एम्बियंस बनाया है नॉर्मली टेबल कुर्सियां होती है आप बैठोगे बट हमने उसको ऐसा एक सेटअप दिया है कि आप एक जैसे घर में जब पुराने घर में आप बैठते हो कंक्रीट के स्लैब पे वैसा आप बैठोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ तो आप एक गांव में आ गए हो एक नॉस्टैल्जिया इफेक्ट होता है
0: जी।
1: तो हमने यही कोशिश करने की यही देने बनाने की कोशिश की कि कोई जब आए तो उनको घर जैसा फील हो आज के जो मॉडर्न डिजाइन है वैसा फील नहीं होना चाहिए तो इसलिए हम यही पब्लिक को जितना कंफर्टेबल हो उतना हम बनाना चाहते हैं
0: और खास मेन्यू क्यूरेट किया है जहाँ पर नॉर्थ इंडिया का स्वाद है साउथ का चस्का है वेस्ट मुंबई का मतलब बोले तो वेस्ट इंडिया का मुंबई से गुजरात से भी आपने ये सारे फ्लेवर्स जुटाए हैं तो ये मेनू पर कितनी मेहनत की आपने
1: देखिए मैं मुंबई से आता हूँ मुंबई में सब मिलता है चाय हो नॉर्थ इंडियन का हो स्नैक्स हो या महाराष्ट्र का जो भी कॉर्नर में जैसे हम लोग ने महाराष्ट्र का जो हम लोग ने किया है वो है अपना वड़ा पाव है जो हम लोग कांदा भजिया बोलते हैं बटाटा भजिया बोलते हैं जो मिसल है तो सब कुछ है तो इसलिए मुंबई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको दिल्ली के छोले भटूरे भी मिल जाएंगे और कुछ भी मिल जाएगा तो इसलिए वही हिसाब से हमने हमारा मेन्यू डिजाइन किया है कि आप मुंबई से हो तो आपको सब चीज पता है
0: क्या बात है तो वही है कि मुंबई में सबका स्वाद मिलकर आता है इसीलिए यहाँ पर चस्का रेस्टोरेंट वैसे ही बॉलीवुड को परोस कर आपके साथ खाता है एकदम घर जैसा स्वाद लेकर आता है जहाँ पर आप जाकर एंजॉय करते हो और एक कोजी से एटमॉस्फेयर में थोड़ा अपने लिए एक टाइम ढूंढते हो इस उम्मीद में कि आप इस रेस्टोरेंट में अभी तक नहीं गए तो जरूर जाएंगे आगे बढ़ते हैं एक आखिरी बार बात करेंगे ग्लेन जी से ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: Bollywood Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: Aamir Khan PK was an iconic film. कई सारे iconic scenes थे. Which one was the most difficult? Radio पकड़ के खड़े रहना या फिर?
2: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई. क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ. मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है. तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे. और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है. ज़बान चल जाती है. उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे, थोड़ा इजी हो जाता था विदाउट सुपारी. चूना और कत्ता होता था.
1: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं. दिन के 100 पान कौन खाता है यार. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: साहब जी, ये मिर्ची हेल्पलाइन है
1: जी? बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है?
0: ओ साहब जी, नूडल्स का एक पैकेट बनाओ तो कम पड़ता है और दो बनाओ तो बहुत ज्यादा होता है, तो क्या करूँ?
1: सिंपल है, तू कस्टमर को ऑर्डर पूछ के बनाना, वो बोले उतना ही बनाना।
2: रख, रख।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: कद चाहे जितना भी ऊंचा लंबा हो, इंसान की पहचान उसके अच्छे नेचर से होती है। यस, और मस्त मौला गौरव की पहचान अच्छी बातों से। फिलहाल बातों ही बातों में याद आ गया, शाम के 7:04 का टाइम हो गया, घड़ी मिला लो।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: 89.6 मिर्च यूएन पर मैं हूँ आरजे मस्मौला गौरव। कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते थे, लेकिन डेस्टिनी ने कहा ना तुम्हें तो रेस्टोरेंट ओनर बनना है, और फाइनली ग्लेन बन गए रेस्टोरेंट ओनर। हमारे कतर के एजान ओएसिस में चलाते हैं अपना रेस्टोरेंट, नामी है चस्का रेस्टोरेंट, जहां स्वाद का ऐसा तड़का लगता है कि आपको इसका चस्का लगता है और फिर आप बार बार जाते हैं, चाहे चाइनीज खाना हो, नॉर्थ इंडियन खाना हो, या फिर मुंबई का स्वाद चखना हो, या इंडिया की कोई भी डिश, सब आपको मिल जाती है। यस, बात करो मैं चस्का रेस्टोरेंट के ओनर ग्लेन से। फाइनली अब एक आखिरी बार आपसे पूछना है, क्यों आने चाहिए लोग चस्का रेस्टोरेंट?
2: देखो गौरव, सभी को लगता है कि वुकेर में है तो काफी दूर है।
0: हाँ।
2: आज के टाइम आप देखो तो आप अल रायन से ट्रेवल करोगे अलवकरा 20 से 25 मिनट।
0: परफेक्ट। हाँ।
2: आज के जो रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना फास्ट, बिना सिग्नल हाँ। के आप 15 से 20 मिनट कहाँ भी पहुंच सकते हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कतर की यही तो खासियत।
2: फिर ये बनता ही है कि आप हमारे रेस्टोरेंट को ट्राई कीजिए, क्योंकि आपको एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग मिलेगा, बॉलीवुड के बीच में घिरे रहोगे। हो सकता है काफी लोगों को पता नहीं है, तो जब आप आओगे तभी आप फील करोगे। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे हमको सपोर्ट भी करिए, ताकि आपको एक घर जैसा खाना, घर जैसा स्वाद मिले, और एक ऐसा फील मिले कि आप घर पर ही बैठ के खा रहे हो।
0: बिल्कुल सही, और सच बात यह है कि उसी फीलिंग को लेने के लिए आपको एक बार जरूर चस्का रेस्टोरेंट जाना चाहिए। एकदम घर जैसा स्वाद लेकर आता है, जहां पर आप जाकर एंजॉय करते हो और एक कोजी से एटमॉस्फेयर में थोड़ा अपने लिए एक टाइम ढूंढते हो। इस उम्मीद में कि आप इस रेस्टोरेंट में अभी तक नहीं गए तो जरूर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी बार बात करेंगे ग्लेन जी से, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल,
3: मस्ती स्वैग और जबरदस्त बीट्स हो तो बस एक ही शब्द निकलता है, वल्ला।
4: ओ लुक इन

0: इस गाने को आवाज दी है बयानी और हार्डी संधू ने, म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। कॉकटेल 2 से सुनते रहिए बल्ला, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो
2: अब भाई, तुम
1: भाई कौन बोल रहा है?
2: अब मुझे अब पता चला
1: भाई कौन बोल रहा है। हेलो कौन बोल रहा है भाई?
2: अब मुझे मुझे आप बताया उसने कि तुम भी यार तुम एक नंबर का आइटम है। मेरी
1: भाई
2: मुझे आप बताया असल मैं वहां गया हुआ था। अबे मुझसे कह रहा
1: अबे भाई ये तो बता दे कौन बोल रहा है, क्या बात
2: है। तूने नताशा को प्रपोज कर दिया भाई सबके सामने।
1: अबे भाई कौन लताशा?
2: नताशा यार, नताशा को प्रपोज नहीं किया।
1: अबे भाई कौन लताशा? मैं तो लताशा को जानता भी नहीं।
2: तो तू पहले मुंह नहीं फाड़ सकता था?
1: भाई तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया भाई, तू तो हंसता ही रहा।
2: अबे तो तुझसे पहले नहीं बोला जा सकता था? मैं तो हंस रहा था, तू तो चुप था। बता देता मुझे, मैंने नताशा को नहीं छेड़ा, मैंने नताशा को प्रपोज नहीं किया। मैं हंसे जा रहा हूँ, हंसे जा रहा हूँ की तरह। नहीं मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह और तू मजाक उड़ा रहा मेरी।
1: मैं कैसे बोल देता जब तू हंसे जा रहा?
2: अबे तो
1: सुनने का मौका नहीं दिया, मैं हेलो हेलो करे जा रहा हूँ।
2: तू शुरू में कहता कि मैं नहीं बोल रहा, मैंने नताशा को नहीं छेड़ा, रॉन्ग नंबर लग गया, ये बोलने में तेरा मुंह फट रहा था क्या? 5 साल में हंसी आती है वो भी बर्बाद कर दी। तू पहले नहीं बता सकता था मुझे कि मैं नहीं बोल रहा?
1: फोन तूने करा, तूने करा।
2: मैंने क्या फोन मैंने क्या? तो तेरे हाथ में तो था, तेरे मुंह में जुबान नहीं थी। तू दिमाग खराब कर रहा है ऊपर से।
1: मैं तो पूछा वो तू बोल कैसे रहा भाई?
2: भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने ऐसी किसी का नंबर मिला दिया, आपका लग गया, मैं आपका मुर्गा बना रहा था, थोड़ी सी मजाक करी और वो अच्छी खासी।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
4: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ मी लव इज डेड।
3: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
5: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी थी।
3: Catch Officer Brown, tearing through the city of Joy's darkest secrets. Brown, streaming on Hindi Z5 from 12th June.

0: 89.6 मिर्ची वन पर मैं हूँ आरजे मस्तपाल गौरव और मेरे साथ आज यहाँ मिर्ची स्टूडियोज में खास मेहमान बनकर बैठे हैं रेस्टोरेंट ओनर ऑफ चस्का यस जो कि एसडान ओएसिस में है चाइनीज इंडियन या फिर आपको मराठी डिश खानी हो ये सब कुछ एक ही छत के नीचे चस्का रेस्टोरेंट मिलता है ग्लेन जो कि इस रेस्टोरेंट को बहुत प्यार से चलाते हैं। अगर हम यूएसपी की बात करें तो आपने बोला कि आप डिशेस सब जगह से बनाते हैं, कतर के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के बारे में कुछ कहना चाहते हैं?
1: नहीं, कतर के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स काफी अच्छे हैं और हमको सभी को फॉलो करना चाहिए। हम भी डेफिनेटली फॉलो करते हैं क्योंकि ये सबके सेफ्टी और हाइजीन के लिए ही होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी एडहियर टू ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन।
0: हमने देखा है कई बार रेस्टोरेंट को फाइन हो जाता है, रेस्टोरेंट यू नो कंप्लीटली शट डाउन किए जाते हैं कुछ महीनों के लिए, कभी कुछ दिनों के लिए। सो बड़ा ध्यान रखता है कतर हमारी और आपकी सेहत का भी, ये कह सकते हैं।
1: जरूर जरूर, ये तो ऑब्वियसली पब्लिक के लिए ही बनाया हुआ है, तो हमारा भी एक ये बनता है, कर्तव्य बनता है कि वी फॉलो दोज रूल्स और क्वालिटी को कभी भी आप नज़रअंदाज ना करें। तो ये सभी रेस्टोरेंट को अपने ध्यान में रखना होना चाहिए और वैसे ही क्वालिटी और जो ये मेंटेन करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और शायद इसी कमिटमेंट की वजह से हम और आप इतना सेफ फील करते हैं, हम कहीं भी खाना खाने जाते हैं और शायद कतर में ये जो रूल्स रेगुलेशन है इतने स्ट्रिक्ट है तभी हम और आप सेफ्टी से खाना खाते हैं, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रहती है और आप जैसे रेस्टोरेंट जो हमें स्वाद का बेहतरीन तड़का परोसते रहते हैं।
1: बिल्कुल गौरव, हमारे यहाँ सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ में बेस्ट क्वालिटी फूड मिलेगा आपको।
0: बिल्कुल मिलेगा और इसीलिए तो चस्का आना है, लेकिन क्योंकि आप एक सिंगर रह चुके हैं, गा कर बुलाइए।
1: अभी तो प्रैक्टिस छूट गई है।
0: हाँ, चलेगा चलेगा, दिल से गाइए।
1: जितना तो आता है मैं आपको गा के सुनाता हूँ।
0: जी जी।
1: तो ये गाना खास करके मैं लोगों को बुलाना चाहूंगा कि आइए
0: चस्का रेस्टोरेंट
1: में। ठीक है, तो

0: स्वाद का सावन बरसेगा चस्का रेस्टोरेंट में. थैंक यू सो मच ग्लेन जी, यहाँ आए, इतनी सारी बातें की. एंड आई एम श्योर पब्लिक आएगी, आपके उस बॉलीवुड थीम रेस्टोरेंट को देखेगी, स्वाद का चस्का लेगी और बार बार चस्का लगाकर आती रहेगी चस्का में.
1: थैंक यू वेरी मच गौरव.
0: एंड जाते जाते कुछ और कहना चाहेंगे मिर्ची लिस्टर से?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज चस्का रेस्टोरेंट में आइए और अपने स्वाद को चखिए.
0: हाय हाय स्वाद को चखिए. एंड हाय हाय स्वाद को चखिए, बिल्कुल सही. एंड गिव इट अ ट्राई, आपको मजा आएगा, ये मैं बोल सकता हूँ क्योंकि हम भी बहुत बड़े फूडी हैं और खाना हमको भी अच्छा लगता है. 89.6 मिर्ची बनते हैं. मी सेइंग चैटअप बाय टू मिस्टर ग्लेन. होप आप चस्का रेस्टोरेंट जाएंगे, एंजॉय करते रहेंगे और मिर्ची को थैंक यू कहते रहेंगे जैसी चीजें आप तक लेकर आता है मिर्ची. इट्स हॉट
2: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरी
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
3: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद इरशाद।

0: IBE payments ka wah tarika. With IBE, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IBE app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IBE, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
3: बार बार।
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: वो भले ही चल ठीक से नहीं पाते थे लेकिन दुनिया को आम की एक बेहतरीन वैरायटी दी।
1: मस्त मौला गौरव।
0: अरे बात करो मैं लंगड़े आम की। 89.6 मिर्ची वन पर पूरी दुनिया में हमारे बनारस का एक आम जाता है, वो है लंगड़ा आम। और यूपी का ये लंगड़ा आम यूं तो बनारस से ही इसकी कहानी जुड़ी है कि बनारस में एक इंसान था जो पैर से ठीक से चल नहीं पाता था। फिर क्या था, लोग उनको प्यार से मजाक में भी लंगड़ा लंगड़ा कहते थे। लेकिन उन्होंने जब अपने एक बगीचे में आम लगाया तो वो आम इतने स्वादिष्ट निकले कि लोगों ने कहा भैया ये तो लंगड़े का आम है। और वो लंगड़े आम से आज कितनी पीढ़ियों बाद भी लंगड़ा आम सबसे ज्यादा मशहूर है पूरी दुनिया में। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि लंगड़ा आम अगर खाना है तो हमारे शहर का ट्राई करना है। एंड अगर इंडिया के कोने कोने के आम खाने हैं तो कल से हम्बा एग्जीबिशन में जाना है। यस, कल सुख वाकिफ के एशियन स्क्वायर में सज जाएगा हम्बा एग्जीबिशन, जहां वैरायटी वैरायटी के आम मिलेंगे। आम के रस बनाइए, आम का मैंगो शेक पीजिए, या फिर हमारे साथ आम की कोई डिश बनाकर हमको बुलाकर पार्टी कीजिए। लेकिन आम के इस एग्जीबिशन का मजा लीजिए। अब अगले 10 दिनों तक मेला 18 से सज जाएगा और सुख वाकिफ में रोज शाम ये बाजार गुलजार हो जाएगा। जरूर आइए और इंडिया के अलग अलग मैंगो की वैरायटी चखिए और मस्त मौला गौरव को थैंक यू कहिए जो ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आता है और साथ ही आपको बताता है कि कैसे वीकेंड पर आम खाने हैं। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
2: only on Mirchi. It's hot.
3: श्रेया घोषाल, आपका गाया हुआ एक ऐसा गाना नहीं है जिसे सुनकर हमें मजा नहीं आता। एक्चुअल में आपको लाइफ में क्या क्या करने में मजा आता है?
4: मुझे जो चीजें करने में बहुत मजा आता है वो है म्यूजिक और अपने फैमिली, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना और ढेर सारे वेकेशंस प्लान करना एंड टू ईट सम गुड फूड, स्पेंड सम टाइम इन द किचन कुकिंग सम गुड फूड। आई बिलीव इन सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एज गिफ्ट्स मोर देन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट।
3: श्रेया घोषाल, काश मैं आपकी तरह सोचती, बट नहीं, मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में ही मजा आता है। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
2: only on Mirchi, it's hot.

0: आ गया फिनाले का मौका आ गया।
1: मस्त मौला गौरव।
0: बात करो मैं आई पे मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5 की, जिसका ग्रैंड फिनाले इस सैटरडे होने जा रहा है एंड एंट्रीज बाय इनविटेशन ओनली। लेकिन सारी हलचल आप मिर्ची वन कतर के इंस्टाग्राम हैंडल पर देख पाओगे, सारी चीजें स्टोरीज में कैद हो रही होंगी। जल्द ही आपको पता लगेगा इस बार कौन वो विनर बनने जा रहा है जो शायद ये ट्रॉफी अपने साथ लेकर जाएगा, और मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5 का क्राउन पहनेगी, वो कौन मॉमीज होंगी, इसके लिए इंतजार कीजिए। लेकिन इस सैटरडे ये सारी बातें सामने होंगी एंड वीकेंड पर आपके लिए बहुत सारा मौका है, जैसे कि आप जा सकते हैं, देख सकते हैं 3-2-1 कतर म्यूजियम में, ओलंपिक म्यूजियम में, वो मैच जहां पर कतर कनाडा से भिड़ेगा, यानी कि होस्ट कंट्री कनाडा वर्सेस लास्ट टाइम होस्ट कतर। एंड ये मैच देर रात 1 बजे शुरू होगा, कल यानी कल रात 12 बजे के बाद जब 1 बजेगा तो आप ये मैच देख पाएंगे फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग। एंड इसके लिए 3-2-1 कतर ओलंपिक म्यूजियम आपको इनवाइट कर रहा है, जाइए कतर को चीयर कीजिए, अलनाबी के लिए प्रे कीजिए कि इस बार हम इतिहास रच कर लौटे। 89.6 मिर्ची वन पर मी सिंह टाटा बाय, कल वीकेंड वाइब के साथ लौटेंगे थर्सडे में ढेर सारी बातें लेकर मिर्ची पर। इट्स हॉट हबीबी, मस्सलाम।

0: Rana, Indie Top 10, Kanika ke saath. On Mirchi.
1: Okay then, Mirchi sun rahe hain aap. Bandi ka naam hai RJ Kanika and it's time for the hottest pop songs of the week. Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi jahan hafte ke top 10 hottest pop gaanon ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Hafte ke top 10 hottest pop gaanon mein ek nayi entry hai, ek re-entry hai. Hamara 90s 2000s ka indie pop classic hai. Some special Gaana spotlights, all this and more. To seedha shuruaat karte hain is hafte ke countdown ki with Gaana number 10. Gaane ka naam hai Udi Udi by Anish Sarkar. Shruday, it's a nayi naveli entry. Udi Udi ne debut kiya hai on Gaana number 10. उसके बाद मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा की आवाज, मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स. गाने का नाम है शीशा. 11 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार है. पिछले हफ्ते से एक्चुअली 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 10.

0: स्वरा वर्मा मिटर और की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स अ कोक स्टूडियो सॉन्ग, दैट मींस फ्यूजन एंड कोलैबोरेशन।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। अभी करो फॉलो, करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। अक्सर जब हम कोक स्टूडियो के बारे में बात करते हैं तो उसके ओवरऑल म्यूजिक इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। हर किसी का अपना फेवरेट कोक स्टूडियो गाना है। कोई मदारी बोलेगा,
2: मदारी मदारी मदारी मदारी मेरा तू, मैं जम्मूरा रे जम्मूरा।
0: तो किसी के लिए वो होगा चौधरी,
2: मर बिगड़े मैं जागी धोकनी, ए चंदा मैं थारी चांदनी, मन दामन मैं पाती कुसी रे जुम जुम जुम।
0: या फिर द गुजराती एंथम खलासी,

0: बट आई ट्रूली थिंक दैट कोक स्टूडियो का इम्पैक्ट किसी एक गाने तक लिमिटेड नहीं है. दिस इज वन प्लेटफॉर्म जो हमें याद दिलाता है दैट इंडिया का म्यूजिक सीन कितना बड़ा है. हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ 100 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदल जाती है, फोक ट्रेडिशन बदल जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बदल जाते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम म्यूजिक में हमेशा सबकी जगह नहीं बनी और वो कोक स्टूडियो ने किया. उसने फोक आर्टिस्ट को सिर्फ फीचर नहीं किया, उनको सेंटर स्टेज दिया है. चौधरी में राजस्थान की मिट्टी है, मदारी में फोक और रॉक एक साथ है. That's what we call the perfect fusion. But ये perfect fusion जो है सिर्फ sounds and genres तक limited नहीं है, right? यहाँ पे generations मिल रही हैं, music के different regions मिलते हैं, independent artists और folk musicians एक साथ मिलते हैं. जो गाने वो produce करते हैं उसमें traditional roots होते हैं, दूसरी तरफ contemporary production, uber cool beats कि ऐसा लगता है ये गाना कहीं सुना भी है और नया भी है. And countdown का जो अगले वाला गाना है वो exactly ऐसी ही collaboration है. एक तरफ आदित्य रिखारी जैसे पॉप स्टार, दूसरी तरफ कुटले खां जैसे contemporary राजस्थानी आर्टिस्ट. रैविटोर का म्यूजिक, ऊबर कूल प्रोडक्शन, गाने का नाम है ए अजनबी. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा दीजिए. 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग ए अजनबी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana.
3: Kya bana?
2: Murga, murga. Nabiyat wala murga.
3: Mirchi, murga.
4: Hello.
5: बेटा आप घर आ जा, मामा परेशान है, खाना खा ले, ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आ जा।
4: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
5: बेटा आ जा, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
4: हेलो
5: बेटा।
4: अरे अंकल, आप ये तो बताइए, बोल कौन रहे हो?
5: देख, अपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते बेटा। एक तो बुढ़ापे में तू ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते, और तू चला जाएगा ना बेटे, क्या होगा हमारा?
4: अंकल मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
5: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
4: अरे अंकल ये तो बताइए, आप बोल कहाँ से रहे हो?
5: बेटे ऐसे नाराज होते हैं तो जानते।
4: अंकल मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है।
5: बेटा देख, ऐसे ये नाराजगी होती है तो ऐसे घर छोड़ कर जाते हैं।
4: माता जी से बात करा दीजिए।
5: बेटे आजा बेटे।
4: अंकल माता कहाँ है?
5: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
4: छाता नहीं अंकल, माता आप अपने कान के बात।
5: बेटा कोई गलती हो या देख तो बेटा माफ कर दे, ऐसे नहीं जाते।
4: अंकल मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
5: अरे बात मेरे बात,
6: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
4: हेलो
5: बेटा। हेलो
4: अंकल, आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
5: बेटा घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
4: अरे अंकल मेरे बात कर, अगर
5: आप तू आ जाएगा तो आज
4: आपने नंबर क्या मिला?
5: तो कान में सुनाई दे बेटा, तेज बोल भाई जी, जो चाहिए दे देंगे। आजा बेटे।
4: अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
5: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे।
6: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो भाई?
4: क्या भाई, मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया चीख चीख के।
6: अब क्यों तेज बोल रहे हो भाई, अब धीरे बोलो और आराम से मेरे साथ कह दो।
4: बोलना जरूरी है?
6: हाँ बिल्कुल जरूरी है।
5: आवाज नहीं आई, तेज बोल।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हिमेश रेशमिया की आवाज, उन्हीं की कंपोजिशन, रजत नागपाल, राणा सोतल का गाना, गाने का नाम है शराब। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है, तीन हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। शराब वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। वी वर टॉकिंग अबाउट कोक स्टूडियो भारत। कैसे? कोक स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंटेम्प्रेरी प्रोडक्शन, फोक आर्टिस्ट, ट्रेडिशनल रूट्स को एक फ्यूजन की तरह प्रेजेंट करता है। हर किसी का अपना फेवरेट कोक स्टूडियो गाना है, बट टुडे वी वांट टू गिव स्पॉटलाइट टू पहली बार ये गाना सुन के एकदम पावरफुल फ्यूजन ट्रैक लगता है, राइट? विशाल ददलानी की रॉ एनर्जी, सोनू कक्कड़ के बहुत इंप्रेसिव वोकल्स हैं इस गाने में, क्लिंटन सेरेयो की अरेंजमेंट, फोक रॉक सूफी इन्फ्लुएंसेस हैं, विच इज ऑल ग्रेट, राइट? बट इस गाने की जो असली ब्यूटी है, जो असली पावर है, उस गाने के मीनिंग में है। जो मेन लाइन है इस गाने की, इट सेज मदारी मेरा तू मैं जमूरा तेरा। मदारी मतलब वो स्ट्रीट परफॉर्मर जो खेल दिखाता है, जमूरा उसका साथी जो उसके इशारों पर चलता है, और ये जिंदगी एक सर्कस ही तो है जहां हम बस नाच रहे हैं। ये लिरिक्स मनोज यादव ने लिखे हैं, इट्स अ स्पिरिचुअल मेटाफर। इंसान जमूरा है और जिंदगी इश्क या शायद ऊपर वाला मदारी। हमको लगता है कि हम कंट्रोल में है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब किसी ना किसी इनविजिबल फोर्स के साथ डांस कर रहे होते हैं, ऐसा मनोज यादव कह रहे हैं इस गाने के थ्रू। विद द कॉम्बिनेशन, द पावर, द एनर्जी, the vocals, it's top notch, 10/10 experiences। गाने को आप सिर्फ सुनते नहीं है, पता नहीं मेरे को लगता है ये गाना ऐसे lungs में उतर जाता है, cause इतनी energy दे जाता है। अपने radio sets की volume बढ़ा लीजिए। इतने सालों बाद भी अगर आप music lover से उनका favorite coke studio india track पूछते हो, मदारी का नाम almost हर कोई बोलता है। विशाल ददलानी, सोनू कक्कड़ की आवाज, क्लिंटन सेरेयो की कॉम्पोजिशन, मनोज यादव के लिरिक्स, दिस इज मदारी, अ coke studio throwback playing right next for you only on गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार. तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं. वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं.
4: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट. और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन.
0: मिर्ची इट्स हॉट.
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा.
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
7: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने.
8: हिट गाने
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
0: Indie Top 10
11: Kanika ke saath on Mirchi
12: Number 4.

0: अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है अर्ज किया है। 20 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अर्ज किया है इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। आई नो दैट हम सबके कंफर्ट सॉन्ग होते हैं, पर हर वो गाना जो हमें अच्छा लगा हमने कभी ना कभी तो पहली बार सुना था ना, इट्स टाइम टू पुट स्पॉट लाइट ऑन अ सॉन्ग लाइक दैट।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. Instagram par jao, mere saath connect karo. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna ho, koi artist recommend karna ho, bindaas aake hit me up. Har artist, har insaan, main, aap, kisi na kisi dream ko chase kar rahe hain. और हम उसकी जर्नी में हैं अभी। एंड ऑफन जब हम इस रास्ते पर चल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ना तो हम वापस जा सकते हैं, ना अभी तक वहां तक पहुंचे हैं जहां जाना था। एक तरह से हम सब एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं। आज का गाना स्पॉटलाइट एक ऐसा गाना है जो इसी फीलिंग को हाईलाइट करता है। गाने का नाम है लॉन्ग वे।

0: इस गाने में तीन आर्टिस्ट हैं, एमसी स्क्वायर, राधिका भिंडे एंड विकेट सनी। एमसी स्क्वायर की जर्नी खुद इस गाने की थीम से कनेक्ट करती है। हरियाणा के पलवल से बिलोंग करते हैं वो, उन्होंने हरियाणवी हिप हॉप को नेशनल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बना दिया। कहानी वो बता रहे हैं लेकिन लग रहा है हमारे बारे में। यू नो वो फीलिंग जब आपका सपना भी पूरा नहीं हुआ है, वो फीलिंग जब आप इतना आगे आ चुके हो कि वापस जाना ऑप्शन नहीं लगता, लेकिन इतना आगे भी नहीं आए हो कि अभी सेलिब्रेट कर सको। कोई अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में सक्सेस ढूंढ रहा है, कोई अपने शहर में ही बेटर लाइफ ढूंढ रहा है। ऑल ऑफ अस आर चेजिंग दैट ड्रीम एंड सम ऑफ अस आर लॉन्ग वे फ्रॉम होम एंड दिस सॉन्ग exactly talks about that. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, बी ओपन टू इट, लिरिक्स को ध्यान से सुनना। एमसी स्क्वायर, राधिका भिडे, विकेट सनी का गाना दिस इज लॉन्ग वे फ्रॉम होम ऑन आर गाना स्पॉटलाइट ऑफ द वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका, एंजॉय।
1: किसी के पीछे नहीं चलना था तो अपने ही रास्ते बना लिए, सस्ती ये दुनिया में आंखों ने ख्वाब मेरी थोड़े महंगे सजा लिए, आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए कि सबको दिखे ये चेहरा हंसता हुआ, रुकी नहीं सांसें तो चल पड़ा फिर और कंधों पे बस्ते उठा लिए। दुनिया घुमा रही है मैं भी कमाल हूँ, देखो ना घूमते जा रहा हूँ कि टूटे ना हिम्मत, इसलिए तस्वीर को माँ की मैं चूमते जा रहा हूँ। मिली ना मंजिल तो चल पड़ा मंदिर को, सोचा भगवान मिलेंगे जो पहले से अंदर है मुझ में बसा हुआ, मैं उसको ही ढूंढते जा रहा हूँ। है घर का वो छोटा जो कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी लेके चला है, जब बैठा वो छाँव में उतारे जूते तब जाना वो कितना चला है। वो तो बस जानता ये कि करो भला तो बस होता भला, इतिहास गवाह है जो बांट के खाता उसे ऊपर वाले से कम ही मिला है। घर वाले याद भी आते हैं, घर लौटो ये बाप नहीं चाहते हैं, जब पेट तो भूखा तो बिस्तर पे नींद तो आती पर ख्वाब नहीं आते हैं। चेहरे पे धूल लगी जिनके आईने घर के वो साफ दिखाते हैं, पेट वो भरते हैं भूख से ज्यादा जो अक्सर ही मांग के खाते हैं। टूटा है दिल, टूटा हूँ मैं पर फिर भी सब रोज संभाला है, कुछ ना कुछ कम ही पड़ा है जब से जिंदगी में होश संभाला है। लिखी है ऊपर वाले ने जिंदगी है या मौत की सजा, मौत ही होगी शायद क्योंकि कलम को अपनी वो तोड़ने वाला है।

0: हार्ड हिटिंग लिरिक्स. गाने का नाम है लॉन्ग वे फ्रॉम होम बाय एमसी स्क्वायर, राधिका बिडे, विकेट, सनी. आई लव दिस अबाउट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड उनके म्यूजिक का सीन, दैट वो ना इन बिटवीन वाली फीलिंग्स को भी हाईलाइट करते हैं. हमेशा अपने गानों में कोई आंसर देने की कोशिश नहीं करते, कभी कभी क्वेश्चन को ट्रेस कर रहे होते हैं एंड हम सब उस फीलिंग में अटके होते हैं. गाने का नाम था लॉन्ग वे फ्रॉम होम, याद कर लीजिए, अपने गाना ऐप पे एड कर लीजिए. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. इट्स अ री एंट्री. संजू राठौर, द मैन, यू आर द लेजेंड. उनका हर गाना मेक्स अस वांट टू ग्रूव. इस बार गाने का नाम है बैंगल्स. आपके प्यार की वजह से इस गाने ने वापस एंट्री मारी है ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना एनी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.
0: गाने का नाम था लॉन्ग वे फ्रॉम होम, याद कर लीजिए, अपने गाना ऐप पे ऐड कर लीजिए. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. इट्स अ री एंट्री. संजू राठौर, द मैन, यू आर द लेजेंड. उनका हर गाना मेक्स अस वांट टू ग्रूव. इस बार गाने का नाम है बैंगल्स. आपके प्यार की वजह से इस गाने ने वापस एंट्री मारी है ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना एनी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: ना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अरमान मलिक, आप गाना अच्छा गाते हैं, आप गाना अच्छा बनाते भी हैं, उसके अलावा क्या क्या अच्छा बनाते हैं?
4: मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाता हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्टर फ्राई मशरूम और स्पिनच, मेरा ब्रेकफास्ट कभी खाना।
3: ये कहना बहुत आसान है अरमान मलिक कि कभी मेरा ब्रेकफास्ट खाना, अरे तो फिर हमें भी बुलाना। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: इंडी टॉप 10
2: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
3: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। पॉप म्यूजिक इज ऑल अबाउट हाउ इट मेक्स अस फील। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हम सुनते हैं तो वो नए नहीं होते पर पुराने भी नहीं लगते, तभी हम उन्हें क्लासिक्स बुलाते हैं। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज़

पिछले 20 साल बाद भी इस गाने में एक चीज पुरानी नहीं लगती। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। द उबर क्लासिक सॉन्ग फ्रॉम 2005, गाने का नाम है मैं दीवाना। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू एज अ कैसेट क्लासिक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: let me take you high. Then another one. Give it to me now, give it to me now. Let me dig, let me dig, dig, dig that body.
1: I swear, ये गाना सुन के स्कूल की छुट्टियां याद आती हैं. वो टाइम याद आ जाता है जब हम गाने सुनते भी थे, देखते भी थे एंड कॉपी भी करते थे. गणेश हेगड़े की आवाज में दैट वॉज मैं दीवाना ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. 90s एंड 2000s का वो आइकॉनिक इंडी पॉप सॉन्ग दैट यू स्टिल थिंक इज फैबुलस हमसे आके शेयर करो. अश्काय और मैं आपके रिकमेंडेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. इट्स टाइम फॉर द टॉप टू सॉन्ग्स ऑफ द वीक. There's been slight movement. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे का गाना बैरन 11 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद करण औजला 21 वंस अगेन 2 पोजीशन ऊपर जंप करके दे हैव सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट. 28 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार है. बॉयफ्रेंड इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है, यानी कि रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची।

0: सत्ते पे सत्ता, ये फिल्म जब आप देखते हैं ना, आपको समझ नहीं आता कि किसको ज्यादा पसंद किया जाए। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इसमें वो जो सातों के सातों भाई है ना, इतने मजेदार हैं, एक एक किरदार है वो अलग अलग। अभी मैंने लास्ट टाइम फिल्म देखी थी तो मुझे शक्ति कपूर पे बड़ा प्यार आ रहा था यार। वो जो उसमें मंगल का रोल करते हैं ना, जो बात करते करते थोड़ा अटकता है। और भी जो भाई का किरदार निभा रहे हैं जितने भी एक्टर्स, वो सारे किरदार इतने यूनिक है ना, सबको कोई ना कोई ऐसे स्पेशलिटी दी गई है। सत्ते पे सत्ता उन फिल्मों में से एक है, वो जहां भी मुझे देखने को मिले ना, मैं तो बैठ जाती हूँ। 1982 की वन ऑफ द हिट फिल्म्स, सुपर हिट मैं नहीं बोलूंगी, बिकॉज आपको पता है 1982 की टॉप 10 फिल्मों में ये आती ही नहीं है। कौन सी फिल्में आती हैं? एक तो डिस्को डांसर, विधाता, प्रेम रोग, खुद्दार, निकाह, अशांति, राजपूत, फर्ज और कानून, शक्ति, एंड हाउ टू फॉरगेट अमिताभ बच्चन साहब की ही नमक हलाल। तो इसका ये गाना सुन लेते हैं जिसमें सीख समझाइश दी जा रही है हमको। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: Yeah.

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
4: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी, टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: पुरानी
0: जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: से।
1: शर्मिला टैगोर जब स्कूल में स्टूडेंट थी तो कैसी थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
2: वेरी स्टूडियस, और जो हमारे कैप्टन जो कहते थे, आई वाज अ स्लेव ऑफ माय स्कूल कैप्टन, अगर मुझे कुछ भी बोले आई वाज द फर्स्ट वन टू गो।
1: वाह, सुंदर भी और स्टूडियस भी। वैसे ये तो आपको पता है ना कि शर्मिला टैगोर बंगाल के प्रेस्टिजियस इलस्ट्रियस गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली से बिलोंग करती हैं। शर्मिला का ये नाम शर्मिला किसने रखा, एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था। ऑल्सो इनका निकनेम रिंकू था।
2: बंगाल में सबका डाक नाम होता है, जिसको हम डाक नाम बोलते हैं। डाक नाम जो एक घर का नाम होता है, रिंकू और शर्मिला वॉज गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर When he came back from Czechoslovakia, वहाँ का नाम था योर्मिला। उस वापस आने के बाद उन्होंने एक किताब लिखा दुई बोन बोल के, तो उसमें देयर वाज शर्मिला एंड उर्मिला। योर्मिला का उनको इन्फ्लुएंस होके वो शर्मिला।
1: चलिए, शर्मिला ने भी टैगोर खानदान का नाम अलग ही तरह से रोशन किया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
0: Purani jeans charu ke saath, sirf Mirchi par.

1969-70 में एक अमेरिकन फिल्म का गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसके काफी सारे वर्जन्स थे, काफी सारे सिंगर्स ने इसे गाया था। एक वर्जन मैं आपको सुनाती हूँ जो वहाँ के तब के फेमस सिंगर एंडी विलियम्स ने गाया था। गाने के वर्ड्स हैं, रेन ड्रॉप्स कीप फॉलिंग ऑन माय हेड। सुनिए जरा।

ऐसा कहा जाता है कि इसके म्यूजिक से 1976 की फिल्म चलते चलते का जो गाना दूर दूर तुम रहे पुकारते हम रहे उसका म्यूजिक लिया गया है। वेल, आप ये गाना सुनो जरा दूर दूर चलते चलते का और खुद ही डिसाइड करो। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Bollywood, Boulder.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: गुलशन ग्रोवर, ऐसे कौन से एक्टर के साथ आपने काम किया है जिनकी गाली ना गाली नहीं लगती?
4: मेरा दोस्त है संजय दत्त, मेरा भाई है। एक टाइम था बगैर गाली के सेंटेंस ही नहीं होता था, तो सीनियर एक्टर्स ने कहा कि यार ये बगैर गाली के बोलता नहीं है, पर संजय दत्त की गाली इतनी क्यूट लगती थी, इनोसेंट सा, लंबे से बाल वाला।
3: This is an audio impersonation, but I have to say, Gulshan Grover, it is 100 on 100 impersonation of Sanjay Dutt. आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
1: Bollywood Boulder. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boulder.
2: Only on Mirchi, it's hot.

वो फिल्म बड़ी स्पेशल होती है जो हमने सिनेमा हॉल में पहली बार देखी होती है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो सिनेमा हॉल, वो शहर, वो वक्त, कितनी खूबसूरत यादें जुड़ी होती है ना। वैसे आपको पता है शाहरुख खान ने पहली कौन सी फिल्म सिनेमा हॉल में देखी थी? भाई तब वो 8 साल के थे और स्कूल में ना उनकी हिंदी बड़ी कमजोर थी, तो उनकी मम्मा ने उनको बोला कि भाई हिंदी के टेस्ट में तुम 10/10 लेकर आओ, तब तुमको फिल्म दिखाने ले जाएंगे। तो शाहरुख ने ऐसे वैसे जैसे भी करके, थोड़ी सी चीटिंग भी करके, हिंदी के टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 10/10 लेकर आए। और तब उनके पेरेंट्स उनको दिल्ली के विवेक सिनेमा हॉल में 1973 की जोशीला फिल्म दिखाने ले गए। ये यश चोपड़ा साहब की फिल्म थी, उसी का गाना सुन लेते हैं। गाना थोड़ा सैड है लेकिन याद कितनी स्पेशल है। आपकी भी ऐसी कोई याद होगी जब आपने पहली बार सिनेमा हॉल में फिल्म देखी थी, कौन सी देखी थी, कौन सा थिएटर था वो, कौन से शहर में, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: अरे हाँ रे मामू, मिर्ची हेल्पलाइन बता, सवाल क्या है?
2: मुझे स्टेडियम में मैच देखने तो जाना है, पर भीड़ नहीं पसंद, क्या करूँ?
1: अरे तो सिंपल है ना गोचू, तू दूसरे स्टेडियम में जाके फोन में मैच देख लेना, वहाँ भीड़ होगी ही नहीं।
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: रात के बज चुके हैं 10, मिर्ची पे, शो का नाम पुरानी जीन्स।

आपको पता है सिंगर शब्बीर कुमार मोहम्मद रफी साहब के बहुत बड़े फैन थे। वेल, उनकी आवाज से भी समझ में आता है कि वो रफी साहब के कितने बड़े मुरीद थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और शब्बीर कुमार साहब ना इस तरह के इवेंट्स में परफॉर्म करते थे, एक शाम रफी के नाम या मोहम्मद रफी सॉन्ग्स नाइट। और इसी तरह के किसी इवेंट में उनको नोटिस किया मनमोहन देसाई साहब ने। भाई उस टाइम पे लोग मोहम्मद रफी साहब जैसी आवाज ढूंढ रहे थे, बिकॉज रफी साहब हैड पास्ड अवे इन 1980। और तब देसाई साहब ने इनका नाम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को रेकमेंड किया और कुली में अमिताभ बच्चन साहब की आवाज ये बन गए। उसी साल 1983 में इनकी बेताब फिल्म भी आई जिसमें सनी देओल की आवाज ये बन गए। उसी फिल्म का ये गाना सुनते हैं, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, साथ में लता मंगेशकर की आवाज भी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो हेलो,
4: अब भाई तुम
3: भाई कौन बोल रहा है?
4: अब मुझे अब पता चला तुमने
3: कौन बोल रहा है। कौन बोल रहा है भाई?
4: अब मुझे आप बताया उसने कि तुम भी यार तुम एक नंबर का आइटम है। मेरी बात
3: नहीं आ रही भाई।
4: मुझे आप बताया, असल मैं वहां गया हुआ था। अब मुझसे कह रहा
3: बता दो
4: अबे
3: भाई, ये तो बता दे कौन बोल रहा है, क्या बात है।
4: तूने नताशा को प्रपोज कर दिया भाई सबके सामने।
3: अबे भाई कौन नताशा?
4: नताशा यार, नताशा को प्रपोज नहीं किया?
3: अबे भाई कौन नताशा, मैं तो नताशा को जानता भी नहीं।
4: तो तू पहले मुंह नहीं फाड़ सकता था?
3: भाई तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया भाई, तू तो हंसता ही रहा।
4: अबे तो तुझसे पहले नहीं बोला जा सकता था? मैं तो हंस रहा था, तू तो चुप था। बता देता मुझे, मैंने नताशा को नहीं छेड़ा, मैंने नताशा को प्रपोज नहीं किया। मैं हंसे जा रहा हूँ, हंसे जा रहा हूँ की तरह। नहीं मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह और तू मजाक उड़ा रहा मेरी।
3: मैं कैसे बोल देता जब तू हंसे जा रहा?
4: अबे तो
3: सुनने का मौका नहीं दिया, मैं हेलो हेलो करे जा रहा हूँ।
4: तू शुरू में कह देता कि मैं नहीं बोल रहा, मैंने नताशा को नहीं छेड़ा, रॉन्ग नंबर लग गया, ये बोलने में तेरा मुंह फट रहा था क्या? 5 साल में हंसी आती है वो भी बर्बाद कर दी। तू पहले नहीं बता सकता था मुझे कि मैं नहीं बोल रहा?
3: फोन तूने करा, तूने
4: मैंने क्या फोन, मैंने क्या? तो तेरे हाथ में तो था, तेरे मुंह में जुबान नहीं थी। तू दिमाग खराब कर रहा है ऊपर से।
3: मैं तो पूछा वो तो, तू बोल कैसे रहा भाई?
4: भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मैंने ऐसी किसी का नंबर मिला दिया, आपका लग गया, मैं आपका मुर्गा बना रहा था, थोड़ी सी मजाक करी और वो अच्छी खासी।
3: अरे तो भाई ये बात पहले बता देते यार, इतना तुमने अटवा दिया, टेंशन अलग दे दिया
5: एंड में। मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

कपूर खानदान के चश्मो चिराग ऋषि कपूर की फिल्म कर्ज का ये गाना हमने सुना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और कपूर खानदान के ही एक चश्मो चिराग थे शम्मी कपूर साहब, जिन पर न जाने कितने ब्रिलियंट अमेजिंग माइंड ब्लोइंग गाने पिक्चराइज हुए हैं, लेकिन उनका मन पसंद ऐसे दिल को छूने वाला फेवरेट गाना पता है कौन सा था? उनका खुद का। 2011 में जब उनकी डेथ हुई, उससे पहले तक जो फोन वो इस्तेमाल कर रहे थे उसमें उनकी रिंग टोन थी ये गाना। कौन सा गाना? शंकर जयकिशन की कॉम्पोजिशन, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी की आवाज, पगला कहीं का फिल्म का ये गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
4: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी, टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
5: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

जूल थी फिल्म का ये आइकॉनिक सॉन्ग कंपोज्ड बाय एसडी बर्मन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है एसडी बर्मन साहब को प्यार से फिल्म इंडस्ट्री में कर्ता कहा जाता था। कर्ता का मतलब कार्य करने वाला या क्रिएटर। अच्छा 1944 में जब एसडी बर्मन कलकत्ता से बॉम्बे आए थे ना, तो बहुत बेजार हो गए थे उस शहर से, फास्ट पेस्ड लाइफ, और उनको लगा कि बॉम्बे बहुत मटेरियलिस्टिक है, उनके स्वभाव का नहीं है। उन्होंने मन बना लिया था कि भाई वापस चले जाएंगे कलकत्ता, लेकिन फिर जैसे तैसे वो रुक गए। अच्छा वह रुक गए, नहीं तो उनकी कहानी, उनका जीवन वैसे आगे नहीं बढ़ता जैसे बढ़ा। और फिर हमें आर डी बर्मन भी मिले, जिनका कंपोज किया हुआ अगेन आइकॉनिक गाना हम सुनेंगे यहाँ पर पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: आमिर खान पीके वाज एन आइकॉनिक फिल्म, कई सारे आइकॉनिक सीन्स थे। Which one was the most difficult? रेडियो पकड़ के खड़े रहना या फिर?
4: उसने मुझे तकलीफ नहीं, तकलीफ मुझे पान में हुई, क्योंकि पूरे फिल्म के अंदर मैं पान खाता हूँ। मेरा किरदार जो पान का बड़ा शौकीन है, तो दिन में करीब 100 पान हो जाते थे मेरे, और 100 पान से तो बड़ी तकलीफ होती है, जबान चल जाती है। उसमें हम सुपारी नहीं डालते थे, थोड़ा इजियर हो जाता था विदाउट सुपारी, चूना और कत्ता होता था।
3: आमिर खान अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं, दिन के 100 पान कौन खाता है यार। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

1975 में ना एक फिल्म आई थी काला सोना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसका म्यूजिक कंपोज किया था आरडी बर्मन ने और इसका जो टाइटल म्यूजिक था ना, इसका थीम म्यूजिक वो जो आरडी बर्मन ने कंपोज किया था ना, वो आप थोड़ा सा सुनिए जरा।

सुनी सुनी सी धुन है ना। वेल, इस धुन को इन्होंने दोबारा इस्तेमाल किया था 1977 में इस गाने के लिए जो हम यहाँ पे सुनने वाले हैं। मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ, खुद आरडी बर्मन की आवाज, फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर 89.6 89.6 मिर्ची।

1981, then 1993, then 2003. मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये 10-10 साल के गैप वाले साल वो साल हैं जब संजू बाबा और उनके पापा सुनील दत्त साहब ने किसी फिल्म में साथ में काम किया था। साथ में काम किया था मतलब एज सन एंड फादर काम किया था। सो 2003 में मुन्ना भाई MBBS, 1993 में ये फिल्म थी क्षत्रिय और 1981 में ये फिल्म थी रॉकी, जो संजू बाबा की लॉन्च फिल्म थी, जो सुनील दत्त साहब ने ही डायरेक्ट की थी। इसी का गाना सुनते हैं। आरडी बर्मन की कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, आशा भोसले, किशोर कुमार, आरडी बर्मन की आवाज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: खिलवाड़ है। अब जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है। अब खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, बना। मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
3: स्पीकिंग।
4: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
3: अच्छा।
4: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
3: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था, तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया। और अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
4: अरे ग्रेट, तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
3: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
4: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
3: आ सकती हूँ मैं उसमें?
4: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियां आएंगी, तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक?
3: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
4: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकलते हैं या जंप करते हैं या हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
3: आपका क्या है?
4: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
3: ठीक है।
4: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
3: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
4: सिर्फ तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ, और आप ही कह रही है मैं बहादुरी के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही है।
3: नहीं मना क्या कर रही है, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
4: हेलो,
3: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
4: तानिया मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, इसमें मेरी क्या गलती है?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: 70s की दो हीरोइंस परवीन बाबी और जीनत अमान ने ये पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया कि हिंदी फिल्मों की हीरोइंस कैसी दिखती हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। फिर चाहे वो उनके लुक्स हो, उनका मेकअप हो, स्टाइलिंग, फैशन, फिगर हो, इस बारे में सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में जीनत अमान ने क्या कहा था।
1: ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, इत्तेफाक से हो गया। There was no strategy, that was who I was. I was studying in America, मैं वहाँ से आई थी। So I had a cosmopolitan upbringing. So that was who I was. And those films worked. And because the films worked, I was accepted by the audience.
0: ऐसे आपको पता है अपनी पहली फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा जो सुपर हिट हो गई थी, जिसके बाद ये सेंसेशन बन गई थी, उसके बाद ये सब छोड़ छाड़ के बैग वैग पैक करके यूएस जाने वाली थी। देवानंद साहब ने उनको रोका कि भाई यहाँ रुक जाओ, तुम्हारा बहुत स्कोप है।
1: Yes, that is exactly what happened. क्योंकि मुझे फिल्मों के बारे में बहुत कम पता था, तो मुझे महसूस नहीं हुआ कि you know, I was starting a career. तो ये सारी फिल्में एक के बाद एक हिट हो गई, तो तब मुझे पता चला कि you know what, I'm a leading lady in Hindi films. So, Yes, then I started to enjoy.
0: बस इसी enjoy में इन्होंने इतना बड़ा और ढेंटडाइन टाइप का करियर बना लिया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है राजस्थान के एक गांव में रेलवे स्टेशन पर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, वहां के गांव के लोग ही टिकट बांटते हैं।
4: फिर तो यहाँ वो चाय चाय ये आवाज नहीं बल्कि ये आती होगी टिकट टिकट। और यार सीओडी तो यहाँ भी होता होगा ना, कैश ऑन डेस्टिनेशन।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
7: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: सुनो, हम किसी से कम नहीं, ठीक है?
1: मिर्ची, सुन रहे हैं आप? पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और नहीं, मैं कोई शेखिया नहीं मार रही, मैं एरोगेंट नहीं बन रही,
0: मैं तो ये बता रही हूँ आपको कि 1977 की हम किसी से कम नहीं के म्यूजिक के लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर नासिर हुसैन साहब ने आरडी बर्मन की कुछ 200 ट्यून्स रिजेक्ट की थी,
1: पर फिर पंचम कौन से कम थे, उन्होंने वो 200 ट्यून्स कहीं और बेच दी मतलब ऑफ कोर्स वो अच्छी ट्यून्स थी, तो किन्हीं और फिल्मों में, किन्हीं और गानों में इस्तेमाल कर ली गई। और इस फिल्म के लिए जो ट्यून्स चुनी गई थी, क्लासिक ट्यून्स, उन्हीं में से एक ही आइकॉनिक सॉन्ग सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: निमृत कौर, आई लव्ड यू इन लंच बॉक्स। अगर आपका लंच बॉक्स आपके घर से आ रहा होता तो उसमें क्या क्या होता?
4: ओह, अगर घर से डब्बा आ जाता हर रोज तो क्या बात थी। सच में अगर होता तो मैं अपनी माँ के बने हुए भरे हुए करेले और आलू के पराठे और साग और गाजर का हलवा और खीर और डब्बा, 6-7 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं डब्बे में।
3: निमृत कौर, आप सिर्फ आवाज करो, हम 250 कंपार्टमेंट्स डाल देंगे आपके लंच बॉक्स में। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बॉल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड।

हाँ, क्या लिखा है गुलजार साहब ने इंतजार पर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो गुलजार साहब कहते हैं, सब्र हर बार इख्तियार किया, हमसे होता नहीं हजार किया, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया, हमने अक्सर तुम्हारी राहों में रुक कर अपना ही इंतजार किया, फिर न मांगेंगे जिंदगी या रब, ये गुनाह हमने एक बार किया। और इंतजार के ऊपर ही गुलजार साहब का लिखा हुआ, एक्चुअली किसी के आने का इंतजार खत्म होने पर जो खुशी होती है उस पर जो गुलजार साहब ने लिखा है, अब हम वो गाना सुनेंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट। और इमेजिन कीजिए आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है, बहुत कस के भूख लगी है और खाना ऑर्डर किया है, डिलीवरी बॉय बस आपका खाना लेकर आ ही गया है और ये गाना चल गया है।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: साहब जी, ये मिर्ची हेल्पलाइन है
2: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
1: ओ साहब जी, नूडल्स का एक पैकेट बनाओ तो कम पड़ता है और दो बनाओ तो बहुत ज्यादा होता है, तो क्या करूं?
2: सिंपल है, तू कस्टमर को ऑर्डर पूछ के बनाना, वो बोले उतना ही बनाना।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot. With Mirchi. Fresh Maal.
1: High voltage beats और unstoppable groove के साथ सुनो माशुका.

इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

इस गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्राई।